हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना घर मठियारी
1: GFM 9
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.

फिलहाल 28 आईनी तरमीम जा आसार नजर न अची रहा है। पार्लियामेंट मौजूद है, इतिहाद सा मुशावरत बाद ही कुछ थी सके तो। कानून वाले वफाकी वजीर आजम नजीर तारन है तो हुकूमत अदलिया एग्जीक्यूटिव आयन तहत कम कर पाबंद है। असाजे गडियल हुकूमत है, इतिहाद की मुशावरत का सिवाय आईनी तरमीम कि कर सके थी। वजीर आजम असाजो सदर भी वही इतिहाद जमायत पो है। तरमीम से इतिहादन के सिग्नल बाद ही मुशावरत के बधाए दी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए रबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से बैंक अलबीब में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना

बातों पे नाराजगी भी नहीं बदलती और वो छुटती नहीं, खत्म नहीं होती। ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला वहीं जगह देगा। लेकिन आजकल की दोस्तियां किस पर है? माल पर, ओहदे पर। अब देखिए, जिनके पास ओहदा होगा उनके हजारों दोस्तों के, और जब वो ओहदा जाएगा तो दोस्तों का समुन्दर भी बह जाएगा। पांचवा, वो शख्स जिसे किसी मालदार और हुस्न जमाल वाली औरत ने बदकारी के लिए बुलाया तो उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूं, यानी ऐसी दावत कबूल नहीं की। छठा, वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में यूं छुपा के सदका दिया कि दाएं हाथ ने जो कुछ दिया बाएं को उसकी खबर तक न हुई। सातवां, वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें बह निकली, अकेले में अल्लाह को बैठ के याद करके रो पड़ा। इन्नल्लाह नेअम्मा यइज़ुकुम बिह, अल्लाह ताला तुमको कितनी अच्छी नसीहत करता है, नहायत उम्दा नसीहत करता है। इन्नल्लाह काना समीअम बसीरा, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, अब जन्नत में जाने के लिए एक और नेक अमल, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व उलिल अम्र मिनकुम, और अपने में से अमर वालों की, साहिब अमर लोगों की। वो कौन? यानी हाकिम। असल हाकिमियत तो अल्लाह ही की है। अला लहुल खल्क वल अम्र, याद रखो अल्लाह ही के लिए खास है खालिक होना और हाकिम होना। अल्लाह, हुक्म किसी का नहीं बजुज अल्लाह के, असल हुकूमत तो उसी की है। इसीलिए सबसे पहले क्या फरमाया? अतीउल्लाह। और उसके बाद किसका दर्जा आता है? अतीउर रसूल। और रसूल की इताअत भी दरअसल अल्लाह ही की इताअत है। वमन युतिउर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की पस तहकीक उसने अल्लाह की इताअत की। ये मुस्तकिल बिज़ात नहीं, अलहदा कोई चीज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। इसके बाद तीसरा दर्जा किसका आता है? और किसकी बात मानो? उलिल अम्र की, यानी अपने में से इख्तियार वालों की। दीनी मामलात में उलमा फुकहा, दुनियावी मामलात में हुक्काम, यानी हुकूमत के चलाने वाले। और ये इताअत भी मुस्तकिल नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत के ताबे होगी। हदीस में आता है, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की इताअत जायज नहीं जहां मासियत हो खालिक की, यानी अल्लाह की नाफरमानी में किसी बंदे की फरमाबरदारी नहीं होगी। फइन तनाज़अतुम फी शैइन, फिर अगर तुमने खींचातानी की। तनाजा किसको कहते हैं? तनाजा का लफ्ज नून ज़े ऐन से है। नज़ा का मतलब होता है खींचना, और तनाजा क्या होता है? बात को एक दूसरे से खींचकर अपने हक में करने की कोशिश करना, बाहम इख्तलाफ करना। और इसमें कौन से तनाजे मुराद हैं? सियासी, मजहबी, फिकही, हर किस्म के तनाजे। अगर तुम्हारा किसी बात में इख्तलाफ हो जाए, तनाजा हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो फिर क्या करो? फरुद्दूहु, तो लौटाओ उसको। किसकी तरफ? इल्लाह, अल्लाह की तरफ। वर रसूल, और रसूल की तरफ। बस, इसके आगे कोई तीसरी अथॉरिटी नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? कि इख्तलाफात की सूरत में इंसान को फैसला कहां से करवाना चाहिए? सबसे पहले अल्लाह की किताब की तरफ लौटे। अगर वहां बात ना मिले तो कहां देखे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। अगर वहां मिल जाए तो फिर क्या करे? वो बात ले ले। और अगर इन दो में ना हो तो फिर क्या हो? फिर कयास किया जाए इन दोनों को सामने रखते हुए, फिर उलमा का इज्तिहाद होगा। आप देखें कि जहां तक कुरान पाक की बात है तो किसी को उसमें इख्तिलाफ नहीं होता, सुन्नत की बात है उसमें इख्तिलाफ नहीं होता। ये मुसलमानों के दरमियान तनाजे कब शुरू होते हैं? जब इन दो को छोड़कर किसी तीसरे को मरकज़े अकीदत बनाया जाता है। और किसी तीसरे पर ईमान लाने के लिए तो हमको नहीं कहा गया।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफ़ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: माँ खाधो गरम करे थी वठा।
3: पुद थकल थकल पी लगे घणी, खैरियता?
2: तव्हां जो पुटु सुम्ही नथो पूरी रात, मां त खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवां।
3: तूं हल वे, मां अचां थो, हल तूं।

0: हे वट एड़ियूं शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तव्हां खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त मां कीअं खाईंदमि
2: तेरा ख़्याल मेरी ज़िंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वारी माउ जी बेहतरीन ग़िज़ा भाउ ऐं ॿार इन्हीअ जो हक़ आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीद के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे 538 शहरों में बैंक अलबीद के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीद से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीद रिश्ता भरोसे का
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
7: ये yeah!

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

काफ काफर होया सुन यार दे पीछे मैं करती गया दीन इस्लाम।

0: हां जे हां दे कर कल सुनी वर ए सच लईए तो मकसद मूल ललस रुगो मूजा विच त मरी वर
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: इट्स 10 एएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
5: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GA FM की आवाज़,
4: GA FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾींहुं अमर थियण वधीक आसान. व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु ग्लोइंग

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन दिया है तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है. ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो.
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन आफ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह. हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो. इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे. मेरी दरख्वास्त है.

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

सिंध के हो तो आवाज़ भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प एक भेरो बीहर खबरदार कन्दे चयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वठे उन जे हक़ में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमुन वाइदो तय न थियो त ईरान खे तमामु घणी ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, जेको हुन जे वेझो पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका ऐं इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती आहे। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिबि विच ओभर जे ॿिन आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अश्करी ऑप्शन्स ते गौर करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान जी फौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वरी बमबारी ऐं नार फॉर्स में वाक़े ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़ खारिज लेन ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज़ लाहे बलपेट ऐं दबियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठण में शामिल आहे। तेहरान में ईरान जी सूरत

रंजे मुख्य जिलन में मकानी इदारन के खाली सीट से नंडी चूंड जारी। पोलिंग जो अमल बिना के वक्त के शाम 5 बजे से जारी रहो। खैरपुर नाथन शाह यूसी बोड़ा वाले जिले काउंसिल के खाली सीट से बीपुर उम्मीदवार अमजद बोलो आईजीडी तरफकार।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आप

हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो जी कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, इतवार को सुबह का सलाम मेरा आप सब तक पहुंच जाए। तो जी कैसे हैं आप सब। तो जी मुझे कहते हैं आर जे सना, और जैसा कि आप सुन रहे हैं जी FM 88 आओ बात करें में आप मौजूद हैं सना आर जे के साथ। उनके आज के नए सवाल सुनने के लिए तैयार हो जाएं, कि आप लोग तैयार हैं मेरे आज का सवाल सुनने के लिए। अगर तैयार हैं तो मुझे SMS करें, और SMS करने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, अपना मोबाइल उठाना, टाइप करना है 888-1PSKR-LKVTR-CTNM और अपने प्यार से नाम के साथ मुझे SMS करके बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन मेरे साथ मौजूद है, कौन कौन उठ गया है अपनी नींद से, और आज की न्यू एक्टिविटीज को शेयर मुझसे जरूर करिएगा, जो आपकी न्यू एक्टिविटीज आज के दिन होने वाली हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जी आज एक और नया सवाल के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं, तो उठ जाइए मेरे साथ और दिमाग को उठाइए अपने साथ। आपने क्या करना है, मेरे सवाल को सुनना है गौर से और उसका जवाब देना है जस्ट, और थोड़ी सी दिमाग को चलाने की जरूरत होती है, बाकी नकल अकल करने की

कोई जरूरत नहीं होती मेरे क्वेश्चंस में। अच्छा जी, तो अभी से मेरे साथ हो जाएं, क्योंकि लास्ट के टाइम अगर आप लोग मेरे साथ आ रहे हैं तो क्या होता है कि मैं और आप ठीक से बात नहीं कर पाते हैं और टाइम हमारा एंड की तरफ चले जाता है तो वो हमारी बातें रह जाती हैं। अच्छा जी, तो जो मैं सवाल करने लगूंगी, सवाल के जवाब देने के साथ आपने एक सॉन्ग का नाम, कोई भी सॉन्ग का नाम आपने साथ में जरूर टाइप करके मुझे भेजना है। अगर आपका राइट आंसर होगा तो सॉन्ग वो प्ले हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई वो आपका राइट आंसर था जिसकी वजह से वो आपका सॉन्ग प्ले हुआ। हाँ, अगर वो सॉन्ग प्ले नहीं होता तो समझिएगा कि आपका जवाब गलत था, लेकिन अगर सॉन्ग अच्छा लगा तो मैं फिर भी चलाऊंगी। आज फिर भी मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर आप लोगों को सॉन्ग मुझे अच्छे लगे तो मैं सॉन्ग को जरूर प्ले करूंगी, अगर आपका आंसर ठीक हो या ना भी हो। ओके जी, तो आपने क्या करना है, कौन दे पाता है कौन नहीं दे पाता है, तो जी सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जी आप सुन रहे हैं आओ बात कर रहे हैं, मैं शामिल हैं आप लोग मेरे साथ, मतलब कि आज सना के साथ प्यारी सी आवाज सुन रहे हैं। तो मेरी आवाज को सुनने के साथ देर किए बगैर मेरे पेज को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना है कि मेरे साथ कौन मौजूद है। एसएमएस करने के लिए आपने टाइप करना है 888 1 SKR लिखी हुई, आप मुझे भेज सकते हैं। और

वन इसके लिखी यूनिवर्सिटी ने आप मुझे भेज सकते हैं और फेसबुक से जो लाइव को देखते हैं यहाँ पर अभी हमारे साथ कौन मौजूद है और कौन नहीं मौजूद हुआ। सबसे पहले हमेशा की तरह आज भी मसरूर अहमद हमें कराची से ज्वाइन करते हैं लेकिन आज उनके साथ सबसे पहले एक और बंदा हमें ज्वाइन करता है तो उन्होंने ज्वाइन किया है हमेशा की तरह लेकिन आज वो सबसे पहले उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है देन उसके बाद हमें जो ज्वाइन किया है वो है मसरूर अहमद। तो जी देखते हैं।

करते हैं और अच्छा लगता है कि आप मुझे ज्वाइन करते हैं सबसे पहले और मेरे कमेंट्स मुझे कमेंट करते हैं और अगर सवाल सुन लेते हैं तो सवाल सुनने के साथ उसका जवाब भी देते हैं। जी आपने क्या करना है, अभी भी यही करना है, मेरा सवाल सुन लिया है तो उसका जवाब भी जरूर दें मुझे और मुझे बताएं कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। लेकिन मेरे सवाल सुनने के जवाब के बाद, मतलब आप जब मेरे सवाल का जवाब दे रहे होंगे तो जवाब के साथ आप मुझे सॉन्ग का नाम भी लिख दें ताकि मैं जब वो सॉन्ग प्ले करूँ तो आप समझ आएगा कि यार आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। ओके जी, तो देख लेते हैं कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी एक और सॉन्ग प्ले करने लगी हूँ, वो भी अपनी पसंद का।

0: तो जी हाँ, वो सॉन्ग सुन कर दिया है मैंने प्ले, और सुनते हैं इस मजेदार सॉन्ग को।
1: वेलकम।

0: तो डिटेल सके सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग सॉन्ग और सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत अच्छा लगा होगा ये एल्बम को भी। तो जी देख लेते हैं यहाँ पर हमें फेसबुक से कौन ज्वाइन करता है, हमें फेसबुक पे ज्वाइन करते हैं कहते हैं अब्दुल रजाक, कहते हैं मोहम्मद खान कंबार, वफा जमाल कंबार, एजाज कंबार, आर्यो पोटर स्टॉप, नज्द जलोरी, मीरपुर खास से शो सुनते ही प्रोग्राम जबरदस्त होता है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच अब्दुल रजाक। और यकीनन आप मुझे ज्वाइन करते हैं, जब सुनते हैं तो एंड तक आप मेरे साथ रहते हैं, तो मेरा सवाल भी सुना होगा, मेरे सवाल का जवाब भी दे दें प्लीज, और साथ में एक सॉन्ग का नाम भी लिख के दे दें ताकि मैं अगर वो प्ले कर दूं तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक था अब्दुल रजाक। तो ऐसे ही आप मुझे ज्वाइन करते रहना, हर संडे में होती हूँ आपके साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ आओ बात करें में। और बात करने का मतलब होता है कि बहुत सारी बातें करनी होती है लेकिन आप लोग तो अकेले अकेले सारी बातें कर लेते हैं, हाँ मुझे बताते भी नहीं सुबह ये एक्टिविटीज। तो जी आपने क्या करना है, मुझे ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करने के बाद अगर मेरे सवाल का जवाब मुझे देना है तो वैसे ही देना है जैसे मैं आपको बताया है, एक सॉन्ग का नाम लिख के जरूर बताना है। और अब्दुल रजाक ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं तो ऐसे ही आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, थोड़ी सी खुशी में और भी इजाफा हो सकता है, मतलब कि आप कर सकते हैं, तो मेरी खुशी में इजाफा करना चाहते हैं तो मुझे जरूर मेरे सवाल का जवाब दें और सॉन्ग का नाम लिख दें, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा देख लेते हैं हमें यहाँ पर एक और जो है हमारा लिस्टर हमारे साथ मौजूद है, अभी देख लेते हैं हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत हुसैन कहते हैं जो हमें SMS करते हैं, सदाकत हुसैन कहते हैं मिरानी, सदाकत हुसैन मिरानी बचल शाह मनी सक्कर बाजी गुजरा हुआ अच्छा मदर डे है और जो आपको माँ का आर्मी दिन याद नहीं, मुझे दुख है मदर समझी नहीं मैं ऐसे कैसे के मदर डे, जी जी बिल्कुल मदर डे था लेकिन जो है मुझे याद नहीं वाकई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस दौरान मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैंने खुद आप लोगों से कहा था कि अगर यार मुझे दुख है या मैं अपसेट हूँ तो मैं क्या करूँ, तो जिस पे आप लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे उस दिन भी, तो ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद होती है हर चीज, अगर आपको याद थी तो मैं आप लोगों को चेक करना चाह रही थी भाई कि अगर आप लोगों को मुझसे ज्यादा याद है तो आप लोग मुझे बता देते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं बताऊं आप बताएं, हम लोग बात कर रहे हैं आओ बात करेंगे मतलब क्या होता है यार, आप और मैं मिलके बात कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो जी की बेस्ट करेंगे हम थोड़ी देर बाद, अभी चलते हैं हम एक छोटे से शॉर्ट कम शब्बे की तरफ, वापस आते हैं, वापस साथ रहेगा हमारे साथ आगे तो आपसे मैंने बात करनी है, ओके जी तो यहाँ पर चलते हैं कम छोटे से शॉर्ट कमर्शल की तरफ, रहेगा मेरे साथ।
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
2: Hemay Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
3: This program is brought to you by
4: Bankal Habib. Rishta bharose ka.
5: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइंस सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है, हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: एलोवेरा फैन
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटर

0: अब निक से मिले चमकता निखार रोज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: वजन की कमी या ज्यादती
4: बे औलादी
3: गंजपन का

sang đây. जिद्दी की बात ही नहीं है, मैं ऐसे छोड़ ही नहीं सकती, आपको पता है। मेरे साथ तो उदास क्यों छोड़ू, मैं आपको वाले मेरी जैसे नहीं हूँ, जिसकी वजह से गई हूँ मैं क्यों छोड़ू ऐसे। मैं क्यों ऐसे उदास छोड़ू, आप जानते भी हो। कुछ नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं, पढ़ाई होगी आपकी। ऐसी आवाज सुनने के लिए कॉल कर रही थी मैं आपकी, ब्रेक लिया था मैंने कहा आपको कॉल करूं। हाँ तो यार मैंने कहा वो अगले संडे अगर सफर में गुजरा या घर आने के बाद, तो ये वैसे इतना मरते हैं सर, बाबर छुट्टी करती रहती हैं आप ये।

असल में वाला मॉल भी मेरा अपडेट पे लगाया, मैंने सुबह लैपटॉप पे काम किया, स्पेस किया थोड़ा, तो देखा मैंने 10 GB खाली हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई 10 GB स्पेस हो गई उसके अंदर। तो मैंने ना अपने इस मॉल का डेटा उसमें लगाया, वाईफाई चल गया उसमें समझो, तो मैंने उसको अपडेट पे लगा दिया, अभी हो ही रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या कपड़े मैंने निकाले हैं अभी, अगर आज भिजवा दिए तो आज भिजवा दूंगी, नहीं तो मैंने निकाले हैं लेकिन वो लेके नहीं आ पाती हूँ, भूल जाती हूँ सुबह में ना, आपके लिए निकाल के रखे मैंने, दिए नहीं किसी को। हेलो, हाँ नहीं वो थी मासी थी, हाँ क्या रात है, नहीं मैं तो घर जाके भी करूंगी बात, आपके साथ तो मुझे थोड़ी रात को सुकून से नींद आती है, और नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि इतने दिनों की नींद है, लेकिन ये कि सुकून से नींद आ जाती है मुझे बात करके। बताओ बड़ी बात है, पता सब है फिर भी। ठीक है, 12 बजे कर रही हूँ कॉल। सही है, ठीक है।

अगेन और यहाँ पर जैसा कि आप लोग मेरे साथ मौजूद होंगे यकीनन और देख लेते हैं अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे, कौन बताएगा मुझे। हम लोग बात कर रहे थे सदाकत हुसैन मीरानी से, कहते हैं कि आपको याद नहीं है माँ का आलमी दिन, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ये कहती हूँ ऐसा कौन सा दिन है जो भाई माँ के बगैर है, सारे दिन माँ के लिए होते हैं, हर चीज माँ के लिए होती है, माँ के साथ जुड़ी होती है। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन क्या कर लेंगे आप, हमेशा हर दिन उन्हीं का होता है, हम उन्हीं की वजह से जिंदा होते हैं, उन्हीं की मोहब्बत हमें जिंदा रखती है। तो ये चीज आप कभी नहीं भूला करें और यकीन करें मैं ये चीजें कभी इन चीजों पे वो नहीं करती कि आज वो है तो आज ये फॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर आप विश कर देंगे कुछ कर देंगे, आप डेली बेसिस पे अगर माँ का आलमी दिन समझ के उनके साथ खिदमत करें, उनका ख्याल रखें ना, यकीन करें वो जो दुआ एक दिन में आप लेना चाहते हैं वो आपको रोज मिला करे। लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है, आप लोग सब समझ रहे होते हैं कि यार एक ही दिन माँ का है तो, या एक ही दिन बर्थडे की होती है, ये चीजें गलत हैं। आप रोज ऐसे बन के समझ के जिए कि आज का ही दिन है या आज का ही वो आखिरी दिन है जो सिर्फ आज ही है। तो रोज अगर आप इस तरीके से जिएंगे आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजरेगी और किसी को तंग करने के बजाय आप अपनी जिंदगी को खुद संवार सकते हैं, रोज दुआएं ले सकते हैं सिवाय एक दिन लेने के। तो ये चीजें नहीं होती, मुझे याद सब कुछ था लेकिन ये चीजें मेरे पास इस तरीके से कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि यार एक ही दिन माँ का है या एक ही दिन इसका है, ऐसा नहीं है। हर दिन माँ का है, हर चीज माँ से है, माँ के बिना कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखा करें। और उसके अलावा देखते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है खालिक लशारी जलोरी से, बाजी जवाब है। अच्छा ओके, जवाब दिया आपने सही हो तो गाना हम तो तेरी राह देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। वाह क्या सॉन्ग आपने बताया, ये सॉन्ग मैं जरूर प्ले करूंगी और आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है इसलिए ही मैं आपका ये वाला सॉन्ग प्ले करूंगी। ओके जी, मैंने इसलिए बताया कि लोग ये ना सुने, सॉन्ग पसंद आया तो प्ले कर दिया, नहीं आपका जवाब बिल्कुल ठीक है तो मैं सॉन्ग आपका जरूर प्ले करूंगी। तो लास्ट में अपना जवाब जरूर बता दूंगी लेकिन अभी मैं सॉन्ग प्ले करूंगी आपके पसंद वाला क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हमारे साथ मौजूद है लाड़काना से, कहती हैं अरिबा बाजी जवाब नहीं आ रहे हैं, प्लीज प्ले असा कंबर वारा वॉइस बाय फायजा अली के। ओके जी, जरूर हम प्ले करेंगे। और सवाल मेरा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, सवाल मेरा ये था कि आपने मुझे बताना था कि यार उसके पास आंखें तो हैं पर वो कुछ देख नहीं सकती, तो ऐसा क्या है जो जिसके पास आंखें हैं वो हमें देख नहीं सकती, वो मतलब हमें नहीं कुछ भी नहीं देख सकती। तो चलिए पता लगाइए और मुझे बताइए जब तक हम यहाँ पर सॉन्ग प्ले करेंगे एक और अच्छा सा।

तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक सॉन्ग प्ले करने लगे हैं कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम भाई अली जफर। तो चलो देख लेते हैं और सुनते हैं ये सॉन्ग। सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और साथ में मिलकर सुनते हैं। उसके बाद जाएंगे हम एक और छोटा कमर्शियल ब्रेक की तरफ, लेकिन जल्दी से वापस आ जाएंगे उसके बाद। लेकिन अभी सुनते हैं सॉन्ग मजेदार।

सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हैव ऑन माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान। कैसी आपका बताएं, कैसी है फजीला सिंधी। और उसके अलावा है हमारे साथ अरीबा शिबाजी। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है, जबरदस्त क्रीम है, बिल्कुल जी आप इस्तेमाल करते रहिए, ऐसे ही हमें बताते रहिए। और गुलाम शबीर तुनियो भाई है फ्रॉम कंबर हाई। आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून। हम भी अच्छ गया आपके शो में। शो इज ब्यूटीफुल। आप ही सॉन्ग तो सुनाए मंजूर सही रानी की आवाज में है। अदमा दिसां थी गानों।

लीड बेस्ट आर्टिस्ट सिस्टर सुद्रा मुस्कान के सिंह फजीला सिंधी और उसके अलावा है हमारे साथ अरीबा शिवाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, बहुत अच्छी है, जबरदस्त क्रीम है, बिल्कुल जी आप इस्तेमाल करते रहिए, ऐसे ही हमें बताते रहिए। और गुलाम शबीर तुनियो भाई है फ्रॉम कंबर हाई, आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून, हम भी अच गया आपके शो में, शो इज ब्यूटिफुल, आप ही सॉन्ग तो सुनाए मंजूर सिहिरानी की आवाज में है, अदम आ गानों मुख्य

न्यू भाई है फ्रॉम कंबर्ट हाई, आप यहाँ कैसी हैं? गुड आफ्टरनून, हम भी अच गया आपके शो में। शो इज ब्यूटीफुल, आप ही सॉन्ग तो सुनाए मंजूर सहिरानी की आवाज में है। अदम डिसा थी गानों मुख्य

குமார் அன்பலூர் காவிய दस्तावेजन मौजब जवाबदार अप्रैल बाद अरणा ते कराची कयो जको अप्रैल बाद एक्सपायर जवाबदार में हासिल कयो पतो गुलशन इकबाल जे अबुल हसन अस्पानी रोड जरूरी पासपोर्ट स्नैप कार्डन जा तफ़सील भी हासिल कया विया आहिनि। पिंकी जे सफ़री दस्तावेज हासिल करण जी भी कोशिश कई पई वञे। जांच अख़्तियारनि मौजब पिंकीअ नालो तब्दील करे हिकु ॿियो स्नैप कार्ड ठाहिराइण जी भी कोशिश कई। मामले जी मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जांच कयूं पिया। बांग्लादेश खिलाफ़ सेलट में जारी सीरीज जे ॿी ऐं आख़िरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम परेशानियुनि जो शिकार। पहिरीं इनिंग में 184 रनसनि ते 8 रांदीगर पोइते मोटी विया। बाबर आज़म जे 8 रनसनि खां सवाइ को बि बैट्समैन बंगाली

0: बालरन जो मुकाबलो न कर सको। गुजरियल डी बंग्लादेश टीम पांजी पहरी इनिंग में 278 रनसू ठाए आउट थी वही हुई बंग्लादेश पारा। लेटन दास 126 रनसू ठाए नुमाया रहो। पाकिस्तान पारा खुरम शहजाद 4, मोहम्मद अब्बास 3, हसन अली 2 विकेटू वरतियों।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफां पेश कयो वियो।
6: सुनी

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: ये प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो बिल्कुल जी,
3: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
4: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
3: पुलिस हेडक्वार्टर चौक
2: पर आप लोगों को बता भी इतने ज्यादा प्यारे प्रोडक्ट्स के बारे में रही हूँ ताकि आप इस्तेमाल कर सके और अपने इस्तेमाल करने के बाद जो है ना हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को रिजल्ट्स किस तरह मिले हैं और किस तरह आप लोगों का फीडबैक है जनाब इन प्रोडक्ट्स को लेकर। तो यहाँ पर पहले मैंने आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया ना, तो अभी आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ 2 प्रोडक्ट हैं, जैसे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन का फेस वॉश है। ये 2 प्रोडक्ट्स अभी तैयार किए गए हैं। अगर आप मजीद जो है ना अच्छा वाला इन्हें प्यार दिखाते हैं, अच्छे वाले प्रोडक्ट का जो है ना वो रिव्यू देते हैं, अच्छी अच्छी आप प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करके उन्हें बताते हैं, तो ये मजीद प्रोडक्ट्स में जो है ना वो इजाफा करते जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट में आप लोगों के लिए चाहे आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है, अगर आप डी स्किन की ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है, अगर दोनों लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी दोनों लगाते जाइए। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर है जनाब 03 15 799 0595। ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और आप इजीली वहां से जाकर परचेज कर सकें। तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत हो जाइए, खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आपका हक है, आप डिजर्व करते हैं। तो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें डी स्किन की ब्यूटी क्रीम है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीट से तैयारशुदा है, 2 रातों में आप लोगों को रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है जनाब। क्या बात है, समझ रहे हैं, 2 रातें बस आप इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से तैयारशुदा है, आपके चेहरे के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे, आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी और आप ग्लो करते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। साथ में अगर आप डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी लगाइए जनाब, वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का फेस वॉश है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। ओके, सो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी क्या कभी बिला वजह जो है ना वो तैयार हो जाते हैं, या फिर आप ऐसे है कि तैयार होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं भाई हाँ तैयार छो थे बुला कर जरूर। कुछ लोग तो ऐसे होते, मैंने देखे शादी ब्याह हो कोई इवेंट हो तब भी वो जो है ना वो कम तैयार होते हैं, और कुछ लोग बड़ी ऐसे होते हैं ना कि बस कुछ भी हो, कुछ हो ना हो, बस वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये अच्छी बात होती है, वैसे तैयार रहा करें, हमेशा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रहा करें। और ये एक और पर्सनल मेरी बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगी। यहाँ पर जो है ना आज हम कॉल्स लेने वाले हैं, ठीक है, प्रोग्राम में। ओके, सो कॉलिंग वाला सेगमेंट हम जरा स्टार्ट कर लेते हैं। कॉलिंग नंबर हमारे प्रोग्राम का होने वाला है 0332132288। सो 0332132288 के ऊपर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कॉल करेंगे और बताएंगे कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये बताने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना हम बातें करेंगे, और अगर आप भी कॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी कॉल हम पिक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉल हमारे प्रोग्राम में आ रही है तो हम जरा पिक करेंगे और देखेंगे फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम,
2: के रस सगट मौजूद आप? दुआ मुझी दुआ अथव ये चवंदा ना मानू केंजी दुआ लगी थे दा मुझी दुआ लगी थे बिल्कुल हुआ सो मुझी दुआ अरे दुआ दे हाल अवाल केड़ो प्रोडक्ट लगाई थी कोन लगाई थी छा कयो थे
5: लवली
2: वरती थे
5: हां
2: थोड़ा ये पार पता दे जे मुके खबर पे तू वाकई लवली वठी आई हां
5: मादी से त देखे मदन काऊ है वर ऊंची गाल कर
2: ले हेलो ये न कर बाबा ये न कर दुआ दिस अच्छा टॉपिक ते दुआ छा चवंदी टॉपिक इहो आहे त छा तव्हां कॾहिं ईअं बिना वजह तयार थींदा आहियो? कुझु माण्हुनि जो शौक़ु हूंदो आहे न बिना वजह ई बसि तयार थियण जो, वञू घर त बसि हू तयार लॻा वेठा हूंदा आहिनि ईअं। अच्छा पहिरियां थींदी हाणे न, ईअं छो? हाणे छो वॾा थी विया आहियूं, ईअं चओ हाणे वॾा थी विया आहियूं, अकुल अची वियो आहे। चलो दुआ कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदो आहे, दुश्मन खे अॼु बि सलाम आहिनि बसि। चलो दुश्मन खे सलाम दुआ जे तरफ़ां। सो थैंक यू सो मच दुआ, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई ऐं तव्हां वाइट हेयर जी लवली क्रीम लॻायो था। नेक्स्ट टाइम तव्हां कॉल कई त तव्हां खां लाज़मी पुछंदमि बाबा निशानी ॿुधायो, ईअं असां यकीन कोन कंदा आहियूं, सम्झो था। सो कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। नेक्स्ट कॉल वेठूं था, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। अॼु इहो कड़ा सिजुबरियो आहे, कॉलियूं मायूं मायूं। आईली नालो ॿुधाए पंहिंजो, माई सुणी अलाह, नालो त ॿुधाए पंहिंजो। लेला लेला लेला ख़ुशा सदको वञाए, कॾहिं ज़ाहिर थी आ ख़ुशि लॻी पई आहे। अदी बि ख़ुशि
5: आहे,
2: ॿियो ॿुधाए प्रोग्राम ॿुधो पिया। चलो मूंखे ॿुधाए टॉपिक ते लीला छा चवंदी। टॉपिक आहे बिला वजह तयार थियण जो शौक़ु अथई या बसि ईअं ई?
5: अच्छा हा ॿुधो न, हर असांजी तयार लॻी पई हूंदी आहे, सिर्फ़ असां न हूंदा, इन करे त थी सघे असांखे जो नव थी वञनि त वरी मेणा मिलंदा न।
2: हा पोइ दिलि टुटी पवंदी,
5: दाना खाई खाई माना
2: ॿुध ॿुध लेला, घर जा दाना खाई खाई पोइ सिदराए शो में गाना ॿुधंदा आहियूं, ईअं न? अच्छा लीला मूंखे ॿुधायो त तव्हां वाइट एज जा कोई प्रोडक्ट इस्तेमालु कया आहिनि या डी स्किन जा कोई लॻाइण जो इरादो आहे या माना? चलो चलो तव्हांखे वापसी ते वेलकम चऊं था। कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदी लीला? सलाम ॾे मिड़ी कंहिंखे या बसि बाए बाए कयूं हाणे?
5: सलाम तव्हांखे स्पेशली ऐं सीमा ऐं बिस्मा रक्षा असांखे ॿुधी पई ऐं असां सां गॾु भाजी मौजूदु आहे
2: जी जी,
5: ऐं बसि सभिनी ॿुधण वारनि
2: चलो थैंक यू सो मच लीला असांजे प्रोग्राम में शामिल। लीला परी ॾाढी माशाल्लाह सुहिणी ऐं सुठी सबाजड़ी छोकिरी आहे। उन खां अलावा तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया जनाब, प्रोग्राम में तव्हां कॉल कयो पिया, कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। कॾहिं कॾहिं मूंखे लॻंदो आहे शायदि मां नंबर ग़लति न ॿुधाए वञा, पर सदाई सही हूंदो आहे। हीअ वारी कॉल ॾिसूं था कहिड़े सां सां गॾु मौजूदु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम।
2: कहिड़े सां सां गॾु मौजूदु आहे?
6: टॉपिक
2: ते तव्हां छा चवंदव?
6: टॉपिक ते इहो ई असां चवंदासीं, असांखां अञा क्रीम ख़रीद कोन कई आहे।
2: चलो इहो बि ज़बरदस्त आहे, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदे? ॿियो ॿुधायो तव्हांजे घोट में मिले थी वाइट एज जी क्रीम या डी स्किन जी क्रीम?
6: न असां मिले कोन थी, असां वरी शहर असांजा काफ़ी परे आहे
2: जी। त पोइ तव्हांखे जेको नंबर प्रोग्राम ॿुधायो हुन ते नंबर ते तव्हां राबितो कयो न त तव्हांजे घोट में अवेलेबल कराए छॾनि, ॻाल्हि ई सवली। चलो चलो ठीकु आहे, दोस्तनि खे यादि करे वेठो। जी जी फ़ाइज़ा त वैसे बि हलाईंदा आहियूं रोज़।
6: हा बसि जेके बि ॿुधनि पिया सभिनी दोस्तनि खे सलाम
2: थैंक्यू। ओके ओके थैंक यू सो मच, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा भाउ। बिल्कुल सी कॉलिंग नंबर 0332132138। बिल्कुल सी कॉल कीजिए, आपकी कॉल हम अटेंड कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप वो इंसान है जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बताएं जरा मुझे जल्दी जल्दी से। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों की कॉल्स हम पिक करते जा रहे हैं। اوکے سو یہ والی کال ہم پک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم. صفا مزے میں. فاروق بھائی چھالا خوش آئے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مامی صفا مزے میں آئے. پروگرام بدھو پیا اوکے من ماں خوش تھا نا تو فاروق بھائی مجھے پروگرام بدھا. چلو ٹاپک تھی چھا چوندا بس یہ صفا بھلو کندا ہے والا. چلو زبردست. مکے یہ بتایا طبیعت وغیرہ صحیح تھا ٹھیک ہے. شکر ہے. اچھا مکے بدا ہانے وائٹ ایج جا پروڈکٹ استعمال کرنے کے بارے میں کوئی ارادو وغیرہ ہے؟ لولی کریم تو وٹھ جو تا ضرور
6: وائٹ لگائندو ایا انن جی. الحمدللہ مکے جو خبر تا اللہ یقین کندا تا کی طرف الحمدللہ مجھے خبر ہے پتر ماں تا پانچ چھ ماں پور گلا نے سوچ نہیں سکدو ائی تھی مجھے سکن خراب تھی ہوئی ہے جائیں کہ نہیں سویا
2: چلو زبردست ماشاء اللہ. یہ سٹھی گانا ہے لولی واری جکا کریمہ نا وائٹ ایزی وہ بھی ٹرائی کرے ڈسجو وہ تو ڈیے جو لگائیں ڈیے جو لگائے کرے کاڑے بھی گھومن ونجو بس ان سے بھی تھی لگ تو بس ریڈی آؤ کاڑے ونجن کے لیے. چلو زبردست. کہڑے دوستن کی یاد کرو پیارو بھا استعمال بھی کرتا ہے تو بالکل جی. کالنگ نمبر 0332132128 ہی والی کال دسوں تا کیڑا سگر موجود ہے. ہلو السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. اج کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟
2: الحمدللہ ٹھیک. کون بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں؟
6: کمار میگواڑ بات کر رہا ہوں. بابو اور ڈسٹرکٹ تھر تھر کرتے ہیں.
2: اوکے پیارے بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ہاں بس نیٹورک کا تھوڑا ایشو ہوگا نا. نیٹورک ہانے صحیح کتنے بھی نہ تو ہلے. ڈاڈو مسئلہ تھی ویو ہے. مکے یہ بدھایو تو تاں اج جو ٹاپک بدھو ہے. پروگرام کے بارے میں
6: پروگرام تو تمام تمام بھلوا تقریباً کچھ سالن کا بدھو پیا پر شامل نہیں ہے ساتھ
2: جی. پہلو دفعہ تو اج کال لگی ہے جی جی جی جی. کیڑا دوستن کی یاد کرو پیارو بھائی؟
6: جی رستم علی پوارا ملک مول بلوچا مومن چالے لگا رہی ہے جون کمار کولی رام چند مکانو بھی جے کی بدن کا سبنی کی کوٹھر ہلا پر اسا جے کلام بدائے جو ماسٹر منظور جو پانی جی گوند
2: اوکے پیارا بھا تاں جی بالکل فرمائش پوری کنا سی تواں سا گالائیو پر ہن ٹائم جو کنا وہ شارٹ کمرشل بریک جو تھی ویو ہے سو تواں کا اجازت دٹوں دا شارٹ کمرشل بریک دی طرف ہلوں تھا. ان کا علاوہ تاں جو محبتوں تاں دی چا محبت سا پروگرام ودن آیو ان کا علاوہ وری اوہی ونی اوہی موٹان تھی سو سٹے ٹیون سٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ 88 نیٹ ورک اور سندری پروگرام وائٹ ایش انڈی اسکن بیوٹی شو.

0: तईं मूंखे ॿुधायो त इस्तेमालु कयो अथव या अञा पोइ कंदो? जी जी ॿुधायो। वाह वाह वाह वाह, छा ॻाल्हि कजे, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में कॉल कई, प्यारा भाउ तव्हांजो मोहबतू। लास्ट में थोरो तव्हांजो आवाज़ कटिजी वियो। वाह साईं, इहो भाउ जो टैलेंट ॾाढो भलो आहे। ॾाढो वीआईपी वीआईपी गाना ॿुधाईंदा आहिनि असांजे प्रोडक्ट ते। सो तव्हां बि कॉल करे सघो था। कॉलिंग नंबर आहे 0333221322 नेक्स्ट कॉलर। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। केरु असां सां गॾु
1: आहे?
0: नालो ॿुधाइजो। सीमा। सीमा, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? मां बि मज़े में। प्रोग्राम ॿुधो पिया सीमा? टॉपिक ते छा चवंदव सीमा? टॉपिक ते छा चवंदव? कुझु बि न माना, बसि ॿाहिरि बने ते। अच्छा, मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां प्रोडक्ट कोई इस्तेमालु कयो आहे जेके ॿुधायां पई? चलो, लाडकाणे में त मिलनि था, रेशम गली वञे न वठी अचो वञी। ईदई शॉपिंग न कई अथई छा अञा? हा, वञे शॉपिंग करण त वठी अचां वाइट एज जी क्रीम या वरी डी स्किन जी या वाइट एज जी लवली क्रीम वठी अचां। चलो सीमा, ॿियो छा चवंदव? जी जी, शामिल कयो। सिद्रा मुस्कान जी प्रोग्राम ॿुधे थी। चलो चलो, सुठी ॻाल्हि आहे, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सीमा, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई। जी जी, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भई सिद्रा मुस्कान बि असांजो प्रोग्राम ॿुधे पई। कॉलिंग नंबर आहे 0333221322 नेक्स्ट कॉलर। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिड़ो भाउ सां गॾु
2: आहे?
0: नवाब शाह। नवाब शाह खां कॉल कई आहे, ख़ुशि आहियो भाउ प्यारा? माशाल्लाह जी, अलहमदिल्ला ठीकु आहियां। प्रोग्राम ॿुधो पिया प्यारा भाउ? टॉपिक ते तव्हां छा चवण वारा आहियो? टॉपिक ते इहो तव्हांजे ॻोठ मां नथो मिले त नंबर प्रोग्राम ॿुधायां थी, नंबर ते तव्हां कॉल करे वठो।
2: नंबर मिलंदो?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तव्हां कॉल त करे ॾिसो न। चलो ठीकु आहे, तव्हांजे ॻोठ में अवेलेबल कराईंदा त जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायां थो नंबर ते तव्हां राबितो ज़रूरु कजो हिकिड़ो दफ़ा। जी जी,
2: अली अदर जमाली, अली दोस्त जमाली, अॼु असां प्रोग्राम ॿुधूं था।
0: थैंक यू, थैंक यू। तव्हां भाइरनि जूं मोहबतूं आहिनि, इहे मोहबत चाह सां प्रोग्राम ॿुधंदा रहो ऐं तव्हां प्रोडक्ट बि लाज़मी लॻाइजो। थैंक यू, थैंक यू प्यारा भाउ, ख़ुशि रहो। हीउ सुकून बाबा सदाई खपे। प्रोग्राम तव्हां ॿुधो पिया ऐं नेक्स्ट कॉल वठूं था, ॾिसूं त नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदिल्ला ठीकु, कहिड़े सां गॾु मौजूदु
1: आहे?
0: एरम, बस एरम शो। बस एरम खेल लॻो पिया तूं।

கிடைக்கி பையன் मार्केट को चक्कर बकर रहो अव इधे शॉपिंग कई अव वी आया प्रोडक्ट जैसे बुधाया थी ओडे वन ओडा मिलन तई शिकायत खी आया सर पवन कुमार वट न मिलो आ प्रोडक्ट चलो शिकायत गौर कर चलो ठीक है चवंदा सर पवन कुमार के बाबा रखो क्रीमियों वारा जे न वटा वी वेंद वन न जैसी सिक हूँ तो वेंदा ऐस तू पंध करें थी ना सागो चलो चलो एडम थैंक यू सो मच तुम प्रोग्राम में कॉल कई चवंदी चलो थैंक यू सो मच बस मिनसा भी खुश सुभाणे हलाया तम थी वा चलो सो मच मुझे प्यारी प्रोग्राम में कॉल इन के थोड़ो स्टॉप लगायूं था छो तो बाकी वनी पंज मिंट बचा है असने प्रोग्राम में प्यारी इरम हुई जेको ने दादा पंद कंदी आए जेके दस वनी वठी इंदी आए ताके ता गोले तो बाबा पांजे चेहरे सा पांजे स्किन जो ख्याल रखे तमा ऐसा प्रोडक्ट है जेके तमा के प्यार तमा सब अच्छा कॉलिंग नंबर आहे जनाब ते तमा राबतो कंदा 1579905 ही नंबर डायल कयो जे तमा जे करीबल थी वने अच्छा किशोर भाई कहते कि दुआ खान धागो कराए दे बाकी के दुआ का वाके धागो कराए देनो पंदो तमा के तमा जी कॉल छो नदी लगे।

अच्छा मुंडा इमरान, बिल्कुल बिल्कुल योगा में। और से डॉक्टर राम फकीर हमारे साथ ही, जे एम जोगी फकीर। हाय सिद्रा डियर, आप कैसी हैं? प्लीज प्ले आबिदा परवीन जी। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश भी लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके अलावा नेमतुल्ला जतोई हैं, नवाब जतोई हैं, बहुत शुक्रिया जी बोथ ऑफ यू।

0: हाय हाय इरशाद अहमद शाह हमारे साथ भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से आप हमारे साथ मौजूद है थैंक यू अकबर भुट्टो हमारे साथ हैं और आप शो में शामिल रहे हैं बहुत शुक्रिया वफा मीर मुनव्वर हमारे साथ हैं हेलो सैयदा बुखारी हमारा शो सुन रही है सैयदा बुखारी वालेकुम अस्सलाम कहती हैं हाँ जी बड़े दिनों के बाद आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है सो उसके लिए बहुत शुक्रिया आप अपना ख्याल रखिएगा जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि आप डेली बेसिस पर हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हो सके ठीक है हिदायतुल्लाह कहते सदरा तो खा सवा किसी और का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता
1: ओ जानी तो खा सवा
0: ऐसा मत बोले बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं और ये आदिल हुसैन कहते हैं प्रोग्राम सफा भल्लो आहे बिल्कुल जी प्रोग्राम तो भल्लो आए पर जडी तवा ही प्रोडक्ट जके बुधाई नी प्रोग्राम में वो इस्तेमाल करना तो पोए तवा भी डाडा भल्ला थी वेना सो ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो जी सुना सुना सफा सुना थी वेनो आई उन का अलावा असानी पोस्ट के लाइक शेयर कयो जन अन्या तई कोन कयो आहे अनवर भा बिल्कुल हाने मोकलाणी जो वक्त सफा करीब अची चुको आहे ओ हते सामू अजे बीठो आहे सो हाने बिल्कुल तवा खा इजाजत वठनासी वरी तवां सां मुलाकात मुझे सुभाणे वारे प्रोग्राम में थियण वारी आहे 1 बजे खां 2 बजे ताईं तव्हांजो संजो साथ हूंदो जॉइन कंदा ॿुधण न विसारींदा ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां भई सया सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: इट्स 3 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: तस्लीम थियल एटमी ताकत आहे। अहिड़ी धमकी ज़हनी दिवालपणी जनून ऐं जंग पसंदीअ जी अकासी करे थी। ज़िम्मेवार एटमी रियासतूं सब स्ट्रेटेजिक संजीदगी जो मुज़ाहिरो कनि थियूं। भारतीय क़यादत ॾखिण एशिया ते हिकु ॿी बहरान जी जंग तरफ़ ॾेखण खां पासो करे

पाकिस्तान जे खिते में इस्तेहकाम लाइ कोशिशनि जी अहमियत वधी वई। अमरीका दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कोशिशनि में पाकिस्तान खे अहम ऐं मर्कज़ी हिसेदार करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल ब्रेड कॉपर चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ एतमाद जोगो हिसेदार आहे, जेको खिते में कालदम दाइश ख़रासां ख़िलाफ़ जंग में मर्कज़ी हैसियत रखे थो। अमरीका जे सेनेट कमेटी खे ब्रीफिंग ॾींदे सेंटकाम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौज जी हिसेदारी सबब दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वॾी कामयाबी मिली आहे। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमरीका जी पुराणी दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जे सिधी रीत अकासी कनि थियूं। दहशतगर्दी वारनि सरगर्मियुनि इलाइक़े सिक्योरिटी ख़तरनि सबबि अफ़गानिस्तान वाशिंगटन जे ध्यान जो महूर आहे।

0: सुनते रहो GAFM
1: 91.6। मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM की आवाज,
4: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

मौके की एहसास, चेहरे के दाग धब्बे, खील महासे और बेजान पन। अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और

0: अञा बि तूं चवीं थो त अदा उमर जेकर तूं मूंखे छॾी त ही लीड़ा संगर थिया आहिनि त अदा उमर इहे बबुरड़ा पलड़ा रोड़े।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: इट्स 3 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
4: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
0: संगर थिया आहिनि त अदा उमर इहे बबुरड़ा पलड़ा रोड़े।
6: गुज़ार त चऊं गुज जी ॻाल्हि
7: जी जी
6: मारीअ खे उमर चयो त तूं इते भली आई, हू चवेसि पई मूंखे छॾ त वञा पंहिंजे वतन, पर ज़ातियुनि जे हिसाब सां त आऊं ज़ातियूं बि जी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे ॾींदासि। ज़ात जा हिन बबुर चयो त उहे पलड़ा या संगर चूंडे, पोइ उन खां पोइ पाण फरमायूं त इहे बबुरड़ा ज़ात जा बबुर, ॿिया ज़ात जा छजड़ा, टिया ज़ात जा आहिनि लयल। उमर चवे त बबुर छजड़ा लयलनि सां मारी तुंहिंजो कहिड़ो वास्तु? चवेसि पई न अदा उमर, मूं हीअं न, मूं हीअं चयो। कीअं भला? चयसि पई जेकर तूं छॾी त आऊं इहे बबुरड़ा रोड़े छजड़नि में विझी वञी लेलड़नि खे।
7: वाह वाह साईं, वाह वाह साईं, वाह साईं, वाह वाह उस्ताद, वाह वाह
6: वाह। त ॾिनी आहे सुगड़नि खे ऐं पाण उन्हनि खां खोड़ सारियूं सुगर पाए जूं भलियूं भलियूं ॻाल्हियूं ॿुधंदासीं।
7: वाह साईं वाह, ज़बरदस्त। सामान इहो आहे असांजा भलोड़ उस्ताद मंठार अली बिघे साहब। जीअं सभिनी हाणे हलंदासीं, असांजो सुगर फ़क़ीर आहे गुलबेग अजमाली साहब, जिन्हनि खे मां ऑलराउंडर सुगर चवंदो आहियां। साईं जन बीन बि वॼाईंदा आहिनि, सभु कम कंदा आहिनि, यानी ऑलराउंडर सुगर आहिनि। उस्ताद त मिड़ी उस्ताद हूंदा आहिनि, पर हर माण्हू जो पंहिंजो हिसाब किताब हूंदो आहे। साईं मंठार साहब जी वॾी महिरबानी, जिन्हनि असांखे हिकु सुठी गुज़ारत ॿुधाई। हाणे हलंदासीं असांजो भलोड़ सुगर आहे गुलबेग अजमाली साहब तरफ़, जेके असांखे ख़ुदा जे ॾिने मां छा था ॿुधाइनि। साईं अस्सलामु अलैकुम।
8: साईं वालेकुम सलाम बाबा।
7: साईं कहिड़ा हाल आहिनि?
8: अलहमदुलिल्लाह द्वारम बाबा। साईं अभी सलीम साहब खुश आयो?
7: अलाह जा एहसान। तव्हां ॿुधायो कीअं पियो लॻे?
8: शुक्र अलहमदुलिल्लाह बहितरीन।
7: भलीकार चओ
8: उस्ताद जा फ़क़ीर जेके गुफ़्ता पंहिंजा ठाहिया, उन गुजारत जा अख़र आहिनि त उज़्बे ते उज़्बे जी या औरत माण्हू जा ॾिसो। सुर लीला चने सर
7: जी बाबा,
8: लाइव प्रोग्राम पियो हले सलीम साहब, हाणे उन जे हिसाब सां असां सुर रखी था पढ़ूं। जो टाइम थोरो हूंदो आहे उस्ताद, उस्ताद मंठार, उस्ताद मोहम्मद कासम
7: जी जी
8: बहितरीन सुगड़ वेठा इनशाला ताला। त गुजारत जा अख़र आहिनि त उज़्बे ते उज़्बे जी या औरत माण्हू जा ॾिसो।
7: उज़्बे ते
8: उज़्बे ते उज़्बे जी या
7: उज़्बे जी या
8: हा औरत माण्हू जा ॾिसो।
6: हिन सिर ते नज़र आहे
8: बच उस्ताद,
7: उज़्बे ते
8: हा उज़्बे ते
7: टिकड़ी ते
8: बचे
7: चौक ते
6: हिन चिरीअ ते
7: सुरीअ ते
8: बचे
6: सुरीअ ते
7: हिन दिलि ते छातीअ ते
8: दिलि छाती खां बचे
7: हिन पब पेर ते
8: बच
7: हा
8: बचे
7: उज़्बे जी या
6: सुर लीला चने
8: सुर लीला चने सर आहे त उज़्बे ते उज़्बे जी या औरत माण्हू जा ॾिसो।
7: औरत माण्हू ॾिसो माण्हू जा ॾिसो
8: हा
7: माण्हू जा चालाक ॾिसो
8: साईं बचे
7: होशियार ॾिसो अकाबर ॾिसो
8: बच
7: वकील ॾिसो
8: बच
7: आलम ॾिसो
8: बच
7: सियाणा ॾिसो
8: बचे
7: साना ॾिसो
8: बच
7: हलभण जमाले
8: हा साईं परावा अख़र आहिनि उस्ताद मंठार गुझा पराओ गुझा
6: बिल्कुलु बिल्कुलु हिन में कोई शक
8: को शक न आहे।
6: गुझ खे
7: उज़्बे जी आहे
8: उज़्बे ते मोहम्मद कासिम डारी
7: जी
8: हाजी नवाब खान ऐं अब्दुल मजीद बि पाण सां गॾु बहितरीन सुगड़ वेठल आहिनि। पर हाणे गुजारत जा अख़र आहिनि त उज़्बे ते उज़्बे जी
7: आहे
8: ओ औरत माण्हू जा ॾिसो।
6: हुन जा लक्षण त ॾिसो
8: बच उस्ताद
6: अरकान त ॾिसो
8: बच बच
7: उज़्बे ते
6: उज़्बे ते हिन छातीअ ते

0: नेटवर्क ते प्रोग्राम लाइव हली रो है खुदा के डिने में छा बुधाइंदा साईं
1: साईं गुजार त पढ़ंदासीं छो त गुजार त जे सनफ हले पई
0: वाह वाह बिस्मिल्लाह
1: उस्ताद गुलबर्ग गुजार त चवे थी जर जो नालो कई जर जो नालो कई तोखे रांद जी हुई कान तडे त इल्म जी कई
2: जर जो नालो कई
1: जर जो नालो कई
2: हा
1: तोखे रांद जी हुई कान
2: हा
1: तडे त इल्म जी कई
2: वाड़े वाह
1: जर जो नालो कई
2: जर जो नालो कई
1: जर जो नालो कई
2: हा
1: तोखे रांद जी हुई कान
2: हा
1: तडे त इल्म जो कई
2: तू इ तो चवी
1: जी वाह
2: तू तो चवी त इयो इश्क पहुंजो पूरो न कई तडे त बस कई इयो जर जो फुल तार त कई ही दिलो मट त कई
1: बड़े वाह
2: अन्या पढ़ पढ़
1: जर जो नालो कई तोखे रांद जी हुई कान
2: तू ये तो चवी ते ही ही वेढ़ो वैरान कई तोखे तो शुद्ध समा हुई कान
1: बचे
2: कल हुई कान
1: बचे
3: खराब सजो ख्वाजा कई
4: ट्रहे तो सफा हुई कान
1: बचे
3: खराब सजो ख्वाजा कई
1: बचे जर जो नालो कई तोखे रांद जी हुई कान तडे त इल्म जी कई
2: भला इ तो चवे त दिल ही तमन्ना पूरो कई
1: जी
2: शुद्ध समात हुई तोखे कान
1: बचे
2: तोखे कल हुई कान
1: बचे
2: तोखे इश्क हो ही कोन
1: बचे
2: पढ़ पढ़
1: जर जो नालो कई तोखे रांद जी हुई कान
2: हाणे मुझे
3: मयो मिठो कई
2: मुझे समझ में हाणे जड़ो मरे पई
1: हां
2: तू ई तो चमे त ही वकार पंजो खराब कई
1: बच
2: ही खानू खराब कई
1: बच
3: एतबार यकीन विनई एतबार यकीन
4: रह तासत हुई
1: अरे भाई
2: अरे वाह
3: वाह
1: अरे वाह सजरानी
2: ने बाबू वाह
0: हाजी नवाब
5: वाह सही वाह वाह सही ये हाजी नवाब असंजराणी साहब
0: जी जी जी
5: जी साईं हाणे सॼो कयो सो
1: साईं हाणे सुर आहे उमर मारवी गुलबेग
2: जी
1: जॾहिं उमर पा थिया मारवीअ खे भालुआ जे खूह तां खणी अची उमर कोट में कैद कयो
2: हेड़े हे
1: हाणे जंहिं महिल कोट में पहुती आहे त मारवी उमर सां ॻाल्हाए पई
2: वाह वाह
1: मारवीअ जो ॻाल्हाइण
2: वाह
1: चवेसि जर जो नालो कई तोखे रांद जी हुई कान तॾे त इल्म जी कई
2: वाह
1: साईं जर जो आ वाह
2: जर जो आ वाह
1: वाह
2: वाह
1: नालो आ नोरंग
2: वाह
1: रांद जी आ तास
2: जी
1: साईं पते जी तास थींदी आ
2: जी
1: इल्म जी आ मंज़िल
2: हल
1: हाणे चवे पई मारवी त वाह जो नओ रंग कई
2: वाह
1: वाह जो नओ रंग कई तोखे तास हुई कान रुगो मंज़िल कई
2: रुगो मंज़िल कई वाह डारी वाह ताड़ी लगे थे वाह वाह वाह डारी वाह
0: वाह सही वाह
2: डारी वाह वाह डारी वाह
0: वाह डारी वाह वाह मोहम्मद कासिम वाह
2: बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन
0: अजे समय हाने हलंदासी सुगर फकीर उस्ताद हाजी नवाब असंजराणी साहब तरफ साईं अस्सलाम वालेकुम
6: वालेकुम सलाम साईं
0: साईं केड़ा रे नवाजा
6: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा साईं तवा खुश आयो खैर आ
0: साईं दुआ अल्लाह जा एहसान साईं अमा छा बुधाईंदा असा के खुदा जे दिने मा
6: नड़ पई तो थींदा
0: वाह वाह जबरदस्त
6: के बैत याद कियान हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाइरन खूह में उछलायो
2: वा
6: हकीकत करे दा बुधायो इंशाल्लाह तवा के पसंद इंदी बुधण वारन के पसंद इंदी आयो साथ सौदागर जो काहे अज कतार खूह दिसी आऊं खुश थी आऊं लाथों पेदा तऊं पार चांगा छजाऊं चरण ले कजूं मयन मां महार लगी उन उदास दी कयूं पाणी जी पचार बाकन मुको पुछरा जो हो खास खिदमतदार पुरत हलो पाणी अंदे हली सोहे कार वठी सिचाई वाज के अजब ॾिठई इसरार ॿार ॾिठई मौके में आदम अहिड़े पार जड़ी सूहस जदी कड़ी सरस सिंगार जड़ी खुशबू खथूरी अजी तड़ी मंजूबकार जड़े मथे आंदा जमाली के उठी तुरत तजले दार

0: वाह जी साहब वाह वाह साई वाह वाह जी वाह वाह जी वाह आज लाइक किथे हाजी साहब पहुंचाए छजो नड बैद सा जबरदस्त हाजी साहब सामिन हाने लंदासी असन जो सुगड़ फकीर गुलबेग जमाली साहब तरफ छजो टाइम तमाम शॉर्ट है उनका पर न्यूज़ ब्रेक तरफ हलनो है कमर्शियल ब्रेक तरफ जी साहब गुलबेग साहब 2 मिनट तमाम जी साहब
1: मुंडी संभरी हल्याऊं से नथा रात रहन माजर मुझे महबूब के हूं वठो था भवन मच्छर कई मगरब पार जू अज सलाहूं प्या सोचन इन जो रायो आए रूम दे हूं के चीन देखा चढ़न के हल्की बिठा बुखाराम में के मके मज मरकन के ओरे लथा ईरान में के अगते व्या अदन बाकी जेकी जाई व्या जहाज में आऊं घोरी आया तन बिठी निहारिया बंदर ते मुझा मुसाफिर चल बोटन जली अथम दामन दस्तगीर जी मां पूजा वेठी पीरन से कदई दम कायम दीन जे मुखु अखड़ियो वरी ईदू कन मुखे वरी मुबारको मिलना सजन दिसी सुरही थाऊं।

चक्कर का पासो करें। शैतान न खत्म थियण वारो हिसो आहे। भारतीय आर्मी चीफ जो चिड़ियाई नाल बयान ज़ाहिर करे थो, भारतीय क़यादत पाकिस्तान जे वजूद वारे तस्वर खे क़बूल न करे सघे। भारत खे पाकिस्तान जी अहमियत तस्लीम कंदे पुरमन गडि॒यल बका जो रस्तो अख़्तियार करणो पवंदो। भारतीय आर्मी चीफ जे हाणोके इंटरव्यू बयान ते रदेमल ज़ाहिर कंदे आईएसपीआर चयो आहे त हक जी जंग दौरान भारत जी मायूसी समूरी दुनिया में वाइखी थी। पाकिस्तान पहिरें ई आलमी सतह ते अहम मुल्क ऐं हिकु तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे। अहिड़ी धमकीअ ज़हनी निवालपणी जनून ऐं जंग पसंदीअ जी अकासी करे थी। ज़िमेवार एटमी रियासतूं सहब स्ट्रेटेजिक संजीदगी जो मुज़ाहिरो कनि थियूं। भारतीय क़यादत ॾखण एशियाई हिकु ॿिए बोहरानीअ जंग तरफ़ ढकण खां पासो करे

पाकिस्तान जे खिते में इस्तेकाम लाइ कोशिशनि जी अहमियत वधी पई। अमरीका दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कोशिशनि में पाकिस्तान खे अहम ऐं मर्कज़ी हिसेदार करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ इतमाद जो हिसेदार आहे जेको खिते में कालदम दाइश खिरासां ख़िलाफ़ जंग में मर्कज़ी हैसियत रखे थो। अमरीका जे सेनेट कमेटी खे ब्रीफिंग ॾींदे सेनेट काम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौजी हिसेदारी सबब दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वॾी कामयाबी मिली आहे। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमरीका जी पुराणी दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जी सिधी रीत अकासी कनि थियूं। दहशतगर्दीअ वारनि सरगर्मियुनि इलाइक़े सिक्योरिटी ख़तरनि सबबि अफ़गानिस्तान वाशिंगटन जे ध्यान जो मबहूर आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर ख़बरदार कंदे चयो आहे ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वठे त उन जे हक़ में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन वाइदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो जेको हुन जे वेझे पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिबि विच ओभर जे ॿिन आला अहदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ असबी ऑप्शन ते गौर करे रहिया आहिनि जिन में ईरान जी फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वॾी बीमारी नार फाट्स में वाक़ ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़ खारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज़ लाहे मलबे हेठां दबियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठणु शामिल आहे। तवनाई जी सप्लाई बाबति रुकावटनि सूरतहाल बरकरार रहे त मुआशी तरक़ी मुतासिर थींदी। वॾे पैमाने ते ड्रिगे मुदे लाइ मुआशी ॾुखियाऊं पैदा थींदियूं। गॾियल क़ौमनि जे मुआशी ऐं समाजी काउंसिल जे इजलास दौरान पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद चयो आहे त हाणोकी आलमी तवनाई ऐं सप्लाई में ईंदड़ रुकावटनि जा असर दुनिया जे हर खिते ऐं मैशियत में महसूस कया पिया वञनि। ॿारनि जूं क़ीमतूं 2025 जी सरासरी भेट में ॿीण खां वधी पियूं आहिनि। वधीक 3,20,00,000 माण्हू गुरबत में वञण जो ख़तरो पैदा थी पियो आहे। ओलह एशिया जा मुल्क हिन बहरान में सिधी रीति शामिल न आहिनि पर असर बर्दाश्त करे रहिया आहिनि। तकरार सबबि सभ खां वधीक मुतासिर मुल्कनि में पाकिस्तान बि शामिल आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त इतमाद जोगी राब्तकारी मुआशी तरक़ी ऐं अवामी ख़िदमतनि खे हथी ॾियण लाइ अंतर आहे। डिजिटल राब्ता अॼु तालीम सिहत वापार ऐं अवामी ख़िदमतनि जी बुनियादी ज़रूरत बणजी चुका आहिनि। पर्यावरण इलाक़नि में डिजिटल पहुच माशी मौक़नि ऐं ॼाण ताईं पहुच जो अहम ज़रियो आहे। टेलीकम्यूनिकेशन ऐं इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जे आलमी ॾिहाड़े ते सदर ज़रदारी IT वज़ारत ऐं PTA मोबाइल ऑपरेटर जी ख़िदमतनि जी वाखाण करे चयो त हुकूमत समूरे मुल्क में डिजिटल पहुच ऐं राब्तनि खे हथी ॾियण लाइ कोशिशूं वठी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त नेशनल AI पॉलिसी 2025 हिकु इनकलाबी क़दम आहे जेका पाकिस्तान में एतरादू ज़हनत जे माहौलियाती निज़ाम जे तरक़ी जी ज़ामिन आहे। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ीअ सां तरक़ी करे रहियो आहे। 5G स्पेक्ट्रम जे कामयाब ऐं शफ़ाफ़ नीलाम डिजिटल पाकिस्तान तरफ़ अहम क़दम आहे। कोकेन डीलिंग जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार अनमोल पिंकी सुञाणप कार्ड ऐं पासपोर्ट जी कापी साम्हूं अची वई। दस्तावेज़नि मूजिबि जवाबदार पिंकी 17 अप्रैल 2018 ते कराची मां पासपोर्ट हासिल कयो जेको 2023 में एक्सपायर थियो। जवाबदार पिंकी सुञाणप कार्ड ते कराचीअ मां 6 दिसंबर 2016 में हासिल कयो ऐं पतो गुलशन इक़बाल जे अबुल हसन रोड जो लिखियल आहे। ज़रियनि मूजिबि पिंकी जे कुटुंब जी पासपोर्ट ऐं सुञाणप कार्डनि जा तफ़सील बि हासिल कया विया आहिनि। पिंकी जा सफ़री दस्तावेज़ हासिल करण जी बि कोशिश कई पई वञे। जांच अख़्तियारनि मूजिबि पिंकी नालो तब्दील करण हिकु ॿियो सुञाणप कार्ड ठाराइण जी बि कोशिश कई। मामले जी मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जांच कई पई वञे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिलिना मेमुण ईंदड़ महीने पिंक टैक्सी आणण जो ऐलान कंदे चयो आहे त पाकिस्तान जी पहिरीं टैक्सी सर्विस चेन में शुरू थींदी। असांजी कोशिश आहे त जल्द खां जल्द BRT शुरू थिए। जिन खे सियासत ऐं तनक़ीद करणी आहे उहे भली कनि, असीं पंहिंजो कम करे रहिया आहियूं। ज़रूरत पई त जवाब ॾींदासीं। कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे शर्जील मेमुण चयो त मंशा त समूरी दुनिया जो मसइलो आहे। बदकिस्मतीअ सां असां मंशात खे संजीदगीअ सां न वरितो। जवाबदार पिंकी हिकु ज़हर वेकरो औरत हुई। ऐं कंहिंजो नालो नथो खणणु चाहियां पर हीउ पूरो नेटवर्क आहे। ऐं कंहिंजो नालो वठंदुसि सोशल मीडिया ते मीम्स ठहंदियूं।

0: मसाला गैस बदहजमी कब्ज खूनी ऐं बादी बवासीर जनाना बीमारनि समेत ॿियनि मर्ज़नि जो इलाज करे रहियो आहे। रोज़ाना सुबुह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नज़द PSO पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर। राब्ते जे लाइ 03112082600 ऐं 0333714311।
1: क्या देख रहे हो?
2: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
0: घर में मेदे जा मसाला गैस बदहजमी कब्ज खूनी ऐं बादी बवासीर जनाना बीमारनि समेत ॿियनि मर्ज़नि जो इलाज करे रहियो आहे। रोज़ाना सुबुह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नज़द PSO पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर। राब्ते जे लाइ 03112082600 ऐं 0333714311।
1: क्या देख रहे हो? ये

0: का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: DAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: वो पे चए तो जेको तो पे सजन सजो सो हकम थई ही
1: वा साई वा
0: जेण वठण का दर न कजाए तू वडो कजाए भी तो सोरी में सी कोन थिने कुंभार चए
1: वा साई वा वा
0: सुगड़ भलाइन ए मा समझा तो लई वठंदा डोर के
1: बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो उस्ताद जी पढ़ो
0: जेको तो पे सजन सजो सो हकम थई ही
1: जी
0: जेण वठण का दर न कजाए तू वडो कजाए भी पो सोरी में सी कोन थिने कुंभार चए
2: वाह वाह
0: सोरी में सी कोन थिने कुंभार चए
1: जेको सजण तो पे सजो।

0: सुठो हक मथे हीर
1: सु हक मथे हीर
0: वाह
1: हाणे उस्ताद मथां अवां ईअं बि ॻाल्हायो पिया डोर जाखर अवां जा ईअं बि चवनि पिया त जॾहिं हरणी अची फाही में मारी बंदि कई त हरणी महबूब साईं खे सॼो ओहो ई महबूब साईं अची वियो जेको ज़मीन पई हरणी
0: जेको
1: सॼण सॼो पए
0: उहो ई अची वियो तमामु भली ॻाल्हि इहा बि किरोर हीअ बि पदमन खां परे
1: वाह
0: भली ॻाल्हि कयव ज़बरदस्त
1: अञा पढ़ो उस्ताद
0: जेको तो पे सजण सजो
1: जी
0: सो हक मथई ही
1: जी
0: ॾियण वठण खां दर न कजाए यानी ड्रिज जाए न ॾियण वठण खां दर न कजाए तू वॾो कजाए बीह पो सोरीअ में सीह कोन थींदे कुंभार ते
1: महबूब साईं जे दौर में हिकु जत हो उहो पंहिंजे उठ खे लॾींदो हुयो पर हुन खे बुखो ॾाढो ॾींदो हो
0: बराबरि
1: पो उन रसो छिलाए पोइ महबूब साईं जे दरबार में हुते वञी पहुतो पोइ महबूब साईं वटि वञी चयईं त साईं मां अमां वटि आयो आहियां मूंखे मुंहिंजे हिन धणी रुगो लॾे थो
0: ॿार
1: खणे थो पर मूंखे ही पाणी जो उन जे वेझे बि मां मरी वियो
0: सुभान अल्लाह ॾाढी भली ॻाल्हि
2: भली अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज़
3: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज

0: अलाह जे नाले ते हर शइ ॾिनई। पो उन औरत ते आख़िरकार काफ़र पंहिंजा माण्हू मोकिलिया, उन खे वठी अची उन जा ॿई हथ कपे छॾे। पोइ हुन जो नंढड़ो बचड़ो हो, उहो बि वञी दरिया में पाणी जे उन जे वेझे किरियो। मां तव्हां
1: इहा जेके जिन जी ॻाल्हि हलंदी आहे उहे हयात हूंदा आहिनि। मोतो क़िबल अंत मोतो।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: It's 3 PM. This time check is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: अलाह जे नाले ते हर शइ ॾिनई। पो उन औरत ते आख़िरकार काफ़र पंहिंजा माण्हू मोकिलिया, उन खे वठी अची उन जा ॿई हथ कपे छॾे। पोइ हुन जो नंढड़ो बचड़ो हो, उहो बि वञी दरिया में पाणी जे उन जे वेझे किरियो। मां तव्हां इहा
1: जेके

0: अपना शहर अपना घटियारी और मटी जियो सिंधी।
1: इट्स 3 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: जदे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM
0: 90.4 अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज।

0: जी उस्ताद मंठार फकीर वरी जो काती हेठ वञी किरी त वरी वञी मच्छी ते पई त मच्छी खे बि उन ॾींहं खां वठी
1: तकबीर
0: खे ऐं काती हुयो मच्छी
1: खे ॿिन्ही खे
0: अलाह जे तरफ़ हुयो सीर पियल आहे उन ॾींहं खां वठी
2: पोइ
0: इहो कुदरत जा रंग आहिनि जेको हुयो सभु इहो वरी सत अड़ थींदो आहे वॾनि ढोरनि में जीअं पाॾो आहे या अॻो गाबो आहे या वहड़ी आहे उठा उठा त इन्हनि में सत अड़ थींदा आहिनि या वरी दुंबो आहे या बकर आहे त उन में
2: नंढे में वरी पोइ टे पतियूं कबियूं उन में हिकड़ी पती जेका आहे सा पाण खाइबी हिकड़ी पती दोस्तनि खे पाड़े वारनि खे माइटनि खे ॾिबी बाक़ी हिकड़ी पती जेका आहे न उहा वरी ग़रीबनि मिस्कीन में
1: विराए ॾिबी
0: हा उहे त सही मुंहिंजे सम्झ में इहो चम या खल आहे इहो बि मुंहिंजे सम्झ में अलाह जे नाले ते ख़ैरात
2: ग़रीब यतीम खे बेवा खे ॾेई छॾे त बहितर उहो
3: असुल में नंढो वॾो ढोर जेको बि आहे हिकड़े में सत पतियूं आहिनि ऐं हिकड़े में हिकड़ी पती आहे यानी हिकिड़ो छेलो गेटो इहे जेको माल आहे इहो हिकड़े जी क़ुर्बानी आहे ऐं वॾो ढोर जेको आहे पोइ इहो वरी शरई हिसाब सां सतनि माण्हुनि जो हुन में हिसो थिए थो जीअं साईं चयो टे हिसा पर टे नंढे में बि थींदा ऐं टे वॾे में छो त भले सतनि जो हिसो आहे पर उन में बि पहिरीं टे थींदा उन टिनि मां हिकिड़ो कॾहिं जुदा कबो हिकिड़ो ॿियो कॾहिं जुदा कबो हिकिड़ो टियों कॾहिं जुदा कबो पोइ उन टे मां जेको आहे उन मां सत हिसा कबा हर को पंहिंजो पंहिंजो हिसो खणंदो बाक़ी जेके ॿ हिसा आहिनि उहे यारनि दोस्तनि लाइ गरीब
2: उस्ताद अॼुकल्ह उस्ताद मंठार अॼुकल्ह ॾिठो वञे थो त ग़रीबनि मिसकिननि खे घटि मिले थो वीचारनि खे असुल में ॻाल्हि आहे त असांजी इल्तिजा इहा ई आहे सभिनी खे त ख़ुदारा ग़रीबनि खे ॾियो ग़रीब जेके बेपहुच माण्हू नथा करे सघनि उन्हनि जी मदद कयो उन्हनि खे ॾियो
3: ऐं असांखे बि चवण जो हक़ आहे ऐं साईं सलीम साहिब खे बि इहो अर्ज़ु कंदुसि त उन्हनि खे ज़रूरु चइबो जेके फिरजुनि जे हवाले कनि था क़ुर्बानीूं उहे अॻिते कम न ईंदियूं जेके उन टाइम ग़रीबनि गुरबनि में वेहरा कोन आहियूं ग़रीब आहियूं पर जॾहिं खां मूं क़ुर्बानीअ जो अड़ शुरू कयो आहे त वेहराइण खां पोइ जेतिरो जंहिं मिसकिन जे हिसे में ईंदो आहे त आऊं पंहिंजे घर में बि ओतिरो ई रधींदो पचाईंदो आहियां छो त अलाह ॾिनो ई इन जे लाइ ॾियण लाइ अलाह इन लाइ कोन ॾिनो आहे त तव्हां हुनखे गॾु कयो मेड़ियो ऐं छो त उहो मेड़े मरवान विया कारून वियो फिरौन वियो निमरूद वियो शदाद वियो उहे मेड़े विया अवां खे विरहाइण लाइ ॾिनो अथसि अवां खे अलाह ऐं अलाह जे रसूल जो इहो फरमान आहे जेको मूं अवां खे ॾिनो आहे उहो ॿियनि लाइ ॾिनो आहे उन्हनि खे ॾियो त महिरबानी थींदी उन्हनि
0: दोस्तनि
3: न न बिल्कुलु बिल्कुलु
0: हक़ बि आहे
3: बिल्कुलु
0: हक़ उन्हनि जो आहे
3: बिल्कुलु
0: त उन्हनि जी बि भाजड़ी थिए उन्हनि जा ॿ बचड़ा माना गोश्त खाइनि
3: न न बिल्कुलु
0: के अहिड़ा बि आहिनि जो वीचारा ॿारहें महीने वीचारा माना ॿारहें महीने गोश्त था खाइनि
3: छो त सरंदीअ वारा रोज़ खाईंदा ऐं मिसकिन मारू माण्हू जेके आहिनि उहे अलाह जो आसिरो ऐं दुनिया ते इन ईद जो आसिरो हूंदो आहे त जॾहिं ज़ुल्हज जी ईद थींदी ऐं मोमिन क़ुर्बानीूं कंदा
2: त
3: असांजा बचड़ा बि गोश्त खाईंदा इंतज़ार में हूंदा आहिनि अलाह हुननि जा इंतज़ार पूरा कंदो अलाह मोमिननि खे तौफ़ीक़ ॾींदो त हू पंहिंजो जेको किरदारु आहे जीअं अलाह ऐं अलाह जे रसूल ॾसियो आहे उन ते हलंदा संदन महिरबानी थींदियूं
0: इहे बि उस्ताद मंठार इहे बि ॻाल्हियूं शरीयत मुताबिक़ आहिनि त पाॾो या गाबो इहे उठ इहे बिणादा या चौगा पर जेको घटो आहे उहो ॿारहं महीननि जो आहे पर इहो शरीयत में आहे त उहो घटो भले बिणादो न थिए पर उन्हनि वॾनि रिढनि में वॾनि रिढनि में या वॾनि घटनि सां गॾु वञी माण्हू बीहारे त कद में उन्हनि जेतिरो आहे त उहो शरीयत उनखे कयो आहे त उहो क़ुर्बान थी सघे थो पर अक्सर करे इहा ॻाल्हि कनि था त माना त जंहिं ॾींहुं तूं उनखे क़ुर्बान करीं थो त उन ॾींहुं उनखे

0: खाधो बखार ऐं पाणी पीआरे पोइ भले वञी कुर्बानी कयूं। तमामु बहितरीन
1: जी असां तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हियूं असांजे छोकिरनि जूं। जी हा, हमेशह ईअं ई करणु खपे छो जो हीउ क़ुर्बानी जी ईद आहे, त हिन में ईअं न आहे त फिलजूं भरणु खपनि। क़ुर्बानी वांगुरु ई असांखे उन वक़्त जो वेलो खाइणो आहे। उन खां पोइ जेको ॾिसो अलाह पाक हर कंहिंखे ॾिए थो, हीअ ईद ग़रीबनि जी बि आहे अमीरनि जी बि आहे। अलाह असांखे ॾेई असांखे आज़माए थो त असां पंहिंजनि पाड़े वारनि जो, पंहिंजनि प्यारनि जो, पंहिंजनि ग़रीबनि जो केतिरो ख़्यालु रखूं था। सभिनि इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु रखंदा कयो। ऐं असांजे सिंध जा सफ़ीर असांजा सुगर सां गॾु मौजूदु आहिनि, टाइम तमामु घटि आहे। आख़िरी चंद लफ़्ज़ असांजे लाइ मां छा ॿुधाइणु चाहींदो अजी साईं, आख़िरी चंद लफ़्ज़ असांजे लाइ, असांजे सामाईन जे लाइ। हीउ पूरे नेटवर्क ते प्रोग्राम हली रहियो आहे।
0: उस्ताद जा अख़र आहिनि त सामी सफ़र हली आहे, जोगी मंझां जूद, नांगन पंहिंजे नफ़्स खे निहोड़े कयो नाबूद। अलहमदुलिल्लाह रबिल आलमीन मञाऊं माबूद, सदक सां सादक थिया माणियो तन मक़सूद, विञाए वजूद पो गुर खे गॾिया कापड़ी। पर सामी सफ़र हलिया कने ॿुधी का, परूड़ियाऊं पूर्ब में समझी सोचे सा, मूं तो किबिलल अंत मूं तो मरणा अॻे ई मुआ, ला ख़ौफ अलहम वलाहम या ज़नून, डप न को ड्रा, गोदड़िया गुरूअ सां वञी सही साधक थिया, पोइ लाहे लाॻा पा पो गुर खे गॾिया कापड़ी। त जोगिन हिन जहान तां असली खयो आरो, नाथ ॾिठाऊं नाह में कामिल करारो, वा आमेनू वा अमेलू सवाल हाथे, मतलब थियनि मोचारो, पो नर हणी नारो, पो गुर खे गॾिया कापड़ी। जब अञा बि असांजो फ़क़ीर साईं चवे थो त ध्यानु कर तूं धरतीअ ते, बंदा न कर तूं बांवर, तड़जी विया तकड़ा जन तोड़ूं कयो तकबर, वॾाई जुगाए थी वाहिद खे जेको पाक धणी आहे परवर, नई धरींदई धूड़ में जिते कारी आहे कबर, ॾींदई न हुन ॾेह में साधक को समर, पो वठी वठ वखर, मता बाज़ार वञे बंदि थी।
1: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, तमामु ज़बरदस्त। जी असां असां सां गॾु हुया असांजा सिंध जा, असांजे सकरनि जा भलोड़ सुगड़ सामिन। अॼु जे हिन सोणी कचहरी मां मोकिलाईंदे अवां सभिनी ॿुधंदड़नि जा दिलि जे गहराइनि सां थोराईंदा आहियूं, जिन पंहिंजनि प्यार ऐं साथ सां महफ़िल खे चार चंड लॻायो। अलाह पाक अव्हां जी ज़िंदगीनि में ख़ुशियूं, मोहबतूं ऐं सुकून हमेशा क़ाइमु रखे। वरी नई कचहरी सां ऐं नवनि रंगनि ऐं नवनि अहसासनि सां मुलाक़ात थींदी। जेसी ताईं जे लाइ इजाज़त ॾियो, पंहिंजे दुआनि में यादि रखिजो, छो त अव्हां जो प्यार ई असांजे लाइ हिमत आहे। खिलंदे रहिजो, भुरकंदे रहिजो, ऐं सिंध जी सुगंध खे पंहिंजे दिलनि में हमेशा ज़िंदा रखिजो। सामिन, वक़्त जो अहसास सुगर कचहरी जो वक़्तु पहुचे थो पुॼाणी ते। सलीम अहमद सरगाणी खे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो। ज़िंदगी अगरि साथ ॾिनो, ॿिए प्रोग्राम में हूंदसि अव्हां सां गॾु। तेसी मुख्य दींदा इजाजत दा खैर खैर।
2: It's 5 PM. This time check is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे, अहिड़ी धमकी ज़हनी डेवलपणे जुनून ऐं जंग पसंदीअ जी अकासी करे थी। ज़िमेवार एटमी रियासतू सहब ऐं स्ट्रेटजिक संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो कनि थियूं। भारतीय क़यादत ॾखिण एशियाई हिकु ॿिए बोहरान या जंग तरफ़ धकण खां पासो करे

पाकिस्तान जी खिते में इस्तेहकाम लाइ कोशिशुनि जी अहमियत वधी वई। अमरीका दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कोशिशुनि में पाकिस्तान खे अहम ऐं मर्कज़ी हिसेदार करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल ब्रेट कोपर चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दीअ जी ख़ात्मे लाइ एतमाद जोगो हिसेदार आहे, जेको खिते में कालादम दाइश खरासान ख़िलाफ़ जंग में मर्कज़ी हैसियत रखे थो। अमरीका जी सेनेट कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾींदे सेंटकॉम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौजी हिसेदारी सबबि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वॾी कामयाबी मिली। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमरीका जी पुराणी दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जी सिधीअ जी तकासी कनि थियूं। दहशतगर्दनि वारनि सरगर्मियुनि ऐं इलाक़ाई सिक्योरिटी ख़तरनि सबबि अफ़गानिस्तान वाशिंगटन जे ध्यान जो महवर आहे।

0: दवा खानों रजिस्ट्रेट फेज मोहम्मद रोड गोश्त बाजार गरीबाबाद सखर खमीस आए जुमो मिलना जो हंद मदनी तिबी दवा खाना मसान रोड नस्त लाला शहजादा चौक रोहड़ी राबतो 0302-36-26-174
1: It's 5:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diye Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जा रहा है जिसकी वजह से हम आपसे इंशाल्लाह 6:15 बजे तक रुखसत हो जाएंगे. जी, आज इससे पहले कि हम बात करें पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट मैच की और दुनिया भर में क्या हो रहा है, मैं बात करूंगा पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप की, जिसका दूसरा एडिशन डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में जारी है. और आज हम डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में बैठकर आपसे मुखातिब हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में, यानी आज का शो आपके स्टूडियोज नहीं बल्कि लाइव ग्राउंड से हो रहा है. और मेरे साथ दो हमारे साथी मौजूद हैं जिनमें बड़े ही एक्सपीरियंस इंग्लिश के और उर्दू के, बड़ी आवाज पाकिस्तान की कमेंट्री की, एफएस मलिक साहब मौजूद हैं, और एक हमारे बहुत ही यंग मगर बहुत टैलेंटेड साथी जिनका ताल्लुक और उनका नाम है मोहम्मद वकास, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं इस इवेंट में, वो मेरे साथ मौजूद हैं. इन दोनों की गुफ्तगू पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट मैच के हवाले से भी और पहले टेस्ट मैच में जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी मैं आपको सुनाऊंगा.

0: मतलब में, यानी आज का शो आपके स्टूडियोज नहीं बल्कि लाइव ग्राउंड से हो रहा है, और मेरे साथ दो हमारे साथी मौजूद हैं जिनमें बड़े ही एक्सपीरियंस इंग्लिश के और उर्दू के, बड़ी आवाज पाकिस्तान की कमेंट्री की, FS मलिक साहब मौजूद हैं, और एक हमारे बहुत ही यंग मगर बहुत टैलेंटेड साथी जिनका ताल्लुक और उनका नाम है मोहम्मद वकास, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं इस इवेंट में, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों की गुफ्तगू पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट मैच के हवाले से भी और पहले टेस्ट मैच में जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी मैं आपको सुनाऊंगा।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: में, यानी आज का शो आपके स्टूडियोज नहीं बल्कि लाइव ग्राउंड से हो रहा है, और मेरे साथ दो हमारे साथी मौजूद हैं जिनमें बड़े ही एक्सपीरियंस इंग्लिश के और उर्दू के, बड़ी आवाज पाकिस्तान की कमेंट्री की, FS मलिक साहब मौजूद हैं, और एक हमारे बहुत ही यंग मगर बहुत टैलेंटेड साथी जिनका ताल्लुक और उनका नाम है मोहम्मद वकास, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं इस इवेंट में, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों की गुफ्तगू पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट मैच के हवाले से भी और पहले टेस्ट मैच में जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी मैं आपको सुनाऊंगा।
2: फॉर्चुनेट होने के साथ साथ जो है वो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खुद को जो है मनवा सकूं इस फील्ड में और अपनी एफर्ट को जारी रखे हुए हूं। आप जैसे सीनियर की दोस्तों की दुआएं साथ हैं तो इंशाल्लाह आई एम क्वाइट हैप्पी व्हाट आई हैव अचीव्ड, और फ्यूचर में भी यही कोशिश है कि जितना कुछ हिस्से में आए उसको हासिल करें।
0: बिल्कुल, मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि तो मेरा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा ये स्टेटमेंट रहा है हमेशा कि FS हमारे एक साथी कमेंटेटर हैं जो डिजर्व करते हैं कि उन्हें PSL की अंग्रेजी कमेंट्री में भी होना चाहिए, उर्दू कमेंट्री में भी होना चाहिए। ही गॉट अ वंडरफुल एंड सूदिंग वॉइस, ही गॉट अ ग्रेट फ्लुएंसी और जबरदस्त अंदाज के कमेंटेटर, और सबसे जो इनका स्ट्रांग पॉइंट जो मेरी पर्सनल फीलिंग हैज अ ग्रेट नॉलेज ऑफ आउट एंड आउट क्रिकेट, क्रिकेट की तमाम हिस्ट्री है जो हर दौर के ग्रेट्स रहे हैं।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
0: बिल्कुल, मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि तो मेरा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा ये स्टेटमेंट रहा है हमेशा कि FS हमारे एक साथी कमेंटेटर हैं जो डिजर्व करते हैं कि उन्हें PSL की अंग्रेजी कमेंट्री में भी होना चाहिए, उर्दू कमेंट्री में भी होना चाहिए। ही गॉट अ वंडरफुल एंड सूदिंग वॉइस, ही गॉट अ ग्रेट फ्लुएंसी और जबरदस्त अंदाज के कमेंटेटर, और सबसे जो इनका स्ट्रांग पॉइंट जो मेरी पर्सनल फीलिंग हैज अ ग्रेट नॉलेज ऑफ आउट एंड आउट क्रिकेट, क्रिकेट की तमाम हिस्ट्री है जो हर दौर के ग्रेट्स रहे हैं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
4: GFM 91.6।
5: इट्स 3 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
6: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
7: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: किए हैं. देर वॉज अ टाइम वेन टेस्ट कैप ऑलमोस्ट वर फॉर सेल. टेस्ट कैप एक वक्त होता था कि खिलाड़ियों का ख्वाब हुआ करता था, लेकिन आजकल टेस्ट कैप जो है वो इतनी मुश्किल नहीं. और टेस्ट कैप ही मिलती है उसके बाद पहली सीरीज के बाद प्लेयर्स गायब होते हैं और फिर साल साल जो है वो टीम से आउट हो जाते हैं. सो दिस हैज बीन द प्रॉब्लम. और दूसरी बात ये है कि मोमेंटम जो है वो नहीं बन पा रहा है. उसकी वजह यह है कि प्लेयर्स का जो माइंड सेट है, तेलंगाना क्रिकेट जो खेला करते थे इंजमामुल हक, मिस बाउल हक, उनके दौर में टेस्ट क्रिकेट जो हुआ करती थी, पाकिस्तान के ग्रेट्स यूनुस खान, जिस तरह मोहम्मद यूसुफ की आप बैटिंग के हवाले से बात कर लें, तो उस एरा में जो दलेराना क्रिकेट पाकिस्तान खेला करता था इवन अगेंस्ट बेस्ट साइड्स, और आजकल आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश और इवन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी उस किस्म की कारकर्दगी जो है वो दिखाने से कासिर हैं. उसकी वजह यही है कि दलेराना क्रिकेट जो है उसका फुकदान देखने को मिल रहा है और प्लेयर्स जो है वो श्योर ही नहीं होते अपनी प्लेस पे. दे आर नॉट इवन श्योर कि हम ये सीरीज खेल रहे हैं तो नेक्स्ट हम होंगे भी या नहीं. तो दे आर इनसिक्योर, दे आर इनश्योर. दिस हैज बीन द प्रॉब्लम. और दूसरी बात यह है कि आप देखें हमारी पीसीबी पता नहीं क्या कर रही है, वनडे T20 में शामिल कर देते और टेस्ट क्रिकेट तो दूर दूर नजर ही नहीं आती. 14 से 15 टेस्ट मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेल रही है साल के, और उसके मुकाबले में आपके टेस्ट मैचेस डबल फिगर में भी नहीं है. तो जब आप इतनी कम क्रिकेट खेलेंगे तो आपको मोमेंटम कहाँ से बिल्ड होगा, आपके पास ग्रेड्स कहाँ से डिवेलप होंगे और आपकी टीम रिदम में कब आएगी. दिस इज अ वेरी मच थिंकिंग पॉइंट और पीसीबी एंड हूएवर आर रिस्पॉन्सिबल नीड टू पुट द थिंकिंग कैप ऑन.
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं टेस्ट मैच की जो अफादियत है, टेस्ट मैच की जो दिलचस्पी है, वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है. उस तरह के टेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं हो रहे जो 100 टेस्ट मैच खेलें, जो 500 खिलाड़ी आउट करें, 400 खिलाड़ी आउट करें. मुझे देखें अब याद नहीं आता कि वसीम अकरम की 416 टेस्ट विकेट्स हैं, बकाल अकाजन उसकी 373 है, इमरान खान की 362 है. उसके बाद मुझे कोई हमारा बॉलर नजर नहीं आ रहा जिसने 300 टेस्ट विकेट्स भी ली हों. तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज है जो कि मैं समझता हूँ हमारी टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल टाई डाउन कर रही है. बहरहाल प्रोग्राम में एक और ब्रेक का वक्त हो गया है. ब्रेक पे जब लौटेंगे तो हमारे दोनों साथियों से मजीद गुफ्तगू करेंगे और फिर 6 बजे के आसपास हम 6 बजे की न्यूज के साथ ही आपसे इजाजत ले लेंगे. और मैं अभी से माजरत पाऊं कि प्रोग्राम को हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, आज लंबा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि हमें ऑन एयर आना पड़ेगा फॉर दी सेमीफाइनल एंड फाइनल ऑफ दी पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप. और अगला जो हमारा कमर्शियल ब्रेक के बाद सिलसिला होगा 10 मिनट का, उसमें हम इसी टेबल चैंपियनशिप और टेबल क्रिकेट के हवाले से हमारे दोनों कमेंटेटर्स और हमारे दोनों मेहमानों से बात करेंगे. लेट्स टेक अनदर ब्रेक. स्टे ट्यून्ड GA FM रेडियो नेटवर्क.
2: मोरू नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सक्खर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज GA FM 88 नेटवर्क.
3: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ. अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा. औलाद के निगहबान वालिदैन हैं. पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे आप जरूर पिलाइएगा.
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
6: आज शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद मरीज जो मुआइनो कर रहे हैं. हर किस्म के आसाबी अमराज जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, कब्ज, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, हाजमे जी खराबी, आई बेन बीमारियन जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीका इलाज मुताबिक मरीजन जो इलाज कर रहे आहे। प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, रोजाना सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई। जुम्मो मोकल एड्रेस आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर, राबते जे लाए 0326-22-00-440।
7: मौसम गर्मी का हो या बड़े ठंड,
8: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन,
7: तबीयत हो डल या छाए सुस्ती,
8: मिलेगी लॉट्स ऑफ मस्ती,
7: ओनली ऑन GFM 88 नेटवर्क।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आपका अपना स्पोर्ट्स राउंडअप और हर इतवार की शाम आप मेरे साथ सुनते हैं GFM रेडियो नेटवर्क पर। मीरपुर खास, बदीन, मातली, हैदराबाद, लाड़काना, नशोरो फिरोज और साथ साथ सखर, एवरीवेयर आपको ये प्रोग्राम सुनने को मिलता है और हम आपके साथ जुड़े रहते हैं और जबरदस्त अंदाज में आपको स्पोर्ट्स के हवाले से आगाही देते हैं। तो मेरे साथ जिस तरह मैंने कहा कि FS मलिक और उनके साथ साथ जो है वो मोहम्मद वकास मौजूद हैं और पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप का आज आखिरी दिन और आखिरी रात है, एक तरह से सेमीफाइनल्स का आगाज अब से कुछ देर बाद होने वाला है और नूर सीसी वर्सेस फहद मियां चन्नू यानी ताकवे स्पोर्ट्स का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा शेरवानी स्पोर्ट्स और मोनी स्पोर्ट्स के दरमियान और देखते हैं कि कौन सी दो टीमें फाइनलिस्ट होंगी और दोनों जो सेमीफाइनल विनर्स हैं वो फाइनल में आज रात देर गए मध्य मुकाबले होंगे। लेट्स सी हु विल बी द चैंपियन। FS मलिक, टेबल क्रिकेटर्स हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप उनको मिल रही है और टेबल क्रिकेट में भी पैसे की बहुत आत है, बड़े अच्छे अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं जो कि टेलीवाइज भी हो रहे हैं और मुख्य प्लेटफॉर्म्स पर शो भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया के भी बिजनेस हैं क्योंकि इस वक्त हम रेडियो पे ऑन एयर हैं और रेडियो ने कमेंट्री को बहुत क्रिकेट को जबरदस्त अंदाज में सर्व किया है। वे बैक कि 1936-37 ही बीबीसी ने और एबीसी और रेडियो ने कमेंट्री शुरू कर दी थी 2002 में रेडियो की एजाद के बाद, एंड देन अब तक रेडियो जो है वो सर्व कर रहा है। वो तो पाकिस्तान में कमेंट्री का मैार बिगड़ा और कुछ सीरीज की कमेंट्री, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश कमेंट्री भी कोई रेडियो नहीं कर रहा, मगर रेडियो की कमेंट्री की अपनी अफादियत है। इसी तरह आप क्या समझते हैं टेप बॉल मैचेस को, इस टेप बॉल के बड़े इवेंट्स को?

0: होने वाली गेम है और इंटरटेनिंग स्टफ है, और हमारी खास तौर पर जो हमें ये दीवानी है क्रिकेट की, और इनको इंटरटेनमेंट चाहिए, और टेप बॉल से बढ़ के इंटरटेनमेंट हो नहीं सकती क्योंकि शॉर्ट है, वक्त की इसमें ज्यादा ज्यादा नहीं है, और आपके पास टाइम होता है खुद को मैचेस देखने के लिए आप लेके आते हैं ग्राउंड्स में, और इवन आप आजकल टेलीवाइज हो रही है तो टीवी पे भी देख रहे हैं, और सोशल मीडिया की वसातत से भी मैचेस देख रहे हैं, और क्यों नहीं, जब आप टीवी पे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो क्यों नहीं आप सुन भी सकते हैं, और यकीनन जिस तरह की ये नाम है, आप बात करें आईकॉन क्रिकेटर्स की टेप बॉल में, जिस तरह FMC है, KC है, TM है, जहीर कालिया है, मुजम्मल कामों की, छोटा विकी, सरमद हमीद, उमर बाजवा, जैनी लेफ्टी, सरदार हसनैन, इनाम लेफ्टी, इरशाद और कादर कश्मीरी, जिस किस्म की ये खिलाड़ी हैं, और जितना इनका और आया हसन पेंडा की आप बात कर लीजिए, इनकी खुद की इतनी फैन फॉलोइंग है यकीनन, क्योंकि आपके जो लिसनर्स हैं खासतौर पे जो ट्रेवलर्स हैं जो सफर कर रहे होते हैं, या जहाँ पे टीवी की या सोशल मीडिया की ज्यादा एक्सेस नहीं है, वहाँ पे आपको लिसनर्स मिलेंगे, और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि टेप बॉल के खिलाड़ियों के फैंस पाकिस्तान के हर कोने में आपको मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे, तो यकीनन अगर ये स्टेप लिया जाए इन फ्यूचर, सो दैट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल।
1: बिल्कुल मैं समझता हूँ, और बावजूद इसके कि मैं ये भी ऐड करूंगा कि सोशल मीडिया या ये चैनल अवेलेबल होने के बावजूद भी एट टाइम जो रेडियो कमेंट्री का चार्म है वो अट्रैक्ट करता है, यही वजह है कि आज भी जब भी रेडियो से कमेंट्री नशर होती है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी रेडियो से हो और BBC की कमेंट्री आज तक लोग सुनते हैं, इवन इंटरनेट के जरिए एप्स के जरिए BBC को ट्यून इन करके और ABC को ट्यून इन करके और रेडियो न्यूजीलैंड को ट्यून इन करके ये सुना जाता है। मोहम्मद वकास, अच्छा आज के मैचेस के हवाले से क्या कहेंगे, कौन सी दो टीम जो है वो फाइनल में क्वालिफाई कर सकती है, और कौन सी टीम जो है वो चैंपियन बन सकती है इस पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप की?
2: तमाम टीम्स अच्छी है, तमाम टीम्स परफॉर्मेंस लाजवाब भी है, लेकिन यहाँ पर न्यू स्पोर्ट्स अगर हम बात करें, अपरम चकवाल उनके साथ है, शाहजहां उनके साथ है, हैदराबाद का बहुत बड़ा नाम साथ उनको कहा जाता है, तो मैं थोड़ा सा उनको दूंगा, वो फाइनल में जा सकती है, और उनके साथ साथ शेरवानी स्पोर्ट फाइनल में जा सकती है, क्योंकि जसवाल अफरीदी उनके साथ जैसे बॉलर है, उनके अलावा मौसम ब्रेकर है, बैटिंग की अगर बात करें सरमद हमीद उनके साथ खेली रहती है, तो ये दो टीमें हैं जो फाइनल में जा सकती है, और लेकिन मुकाबले अच्छे देखने को मिलेंगे और टेपबाल, जैसे आपने बात की टेपबाल बहुत ज्यादा उरूज पर है, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या इंडिया, जहां पे भी हो टेपबाल क्रिकेट खेली जाती है, नेपाल चैंपियनशिप ने जिस तरह नौजवानों को यहाँ पर मौका दिया है, और इसके बाद इन्होंने ये ऐलान भी यहाँ पर कर दिया है कि 20 सितंबर तक कश्मीर में भी पाकिस्तान नेपाल चैंपियनशिप का अगला इवेंट किया जाएगा, और उसके बाद शायद अगला इवेंट भी किया जाए, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल इवेंट भी अगर पा सकते हैं, इन्होंने हमें बड़ी तारीख की होगी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टेबल क्रिकेट मजीद उर्मूज पर जाने वाली है, और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि ओलंपिक में भी टेबल क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज में दे रहा हूँ, अब ओलंपिक में भी टेबल क्रिकेट को एड किया जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट क्रिकेट है और ओलंपिक में उन चीजों को एड किया जाता है जो क्रिकेट फौरन लेते हैं, तो एक घंटे दो घंटों में इनका रिजल्ट निकल आएगा, और इंशाल्लाह तो टेबल क्रिकेट मजीद आगे की तरफ जा रही
1: है, इस बात में कोई शुभ नहीं, और ये वाकई ब्रेकिंग और बड़ी न्यूज है कि टेबल उसे ओलंपिक में भी शामिल किया जाए और इंशाल्लाह इंटरनेशनल इवेंट भी हो। अच्छा फर्क शेर, अगर मैं क्योंकि आपका ताल्लुक कमेंट्री से और वकास का ताल्लुक भी कमेंट्री से, तो कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एक तो आप दो इंटरनेशनल और दो नेशनल, यानी दो पाकिस्तान के दो इंटरनेशनल, आपके ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर्स बताइए पहले, देन मैं कॉमेंटेटर्स पे आऊंगा।
0: ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर्स की बात करें तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन ब्रायन चार्ल्स लारा है, और ऑल टाइम फेवरेट बॉलर जो है वो वसीम अकरम,
1: लेकिन
0: वसीम अकरम के अलावा इंटरनेशनली अगर मैं लाइक करता हूँ तो वो मेलकम मार्शल, ग्रेट वेस्ट इंडियन बॉलर, और पाकिस्तान में या पाकिस्तान में अगर बॉलर की बात की जाए तो मोहम्मद आसिफ एक ऐसे बॉलर थे जो कि बहुत ही ग्रेट हो सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हिज करियर डिडंट प्रोलॉन्ग एज इट शुड हैव।
1: जी हाँ, यकीनन मोहम्मद आसिफ बहुत सारे मैचेस अभी खेल सकते थे, मगर किसी न किसी तरह उनका करियर जो है वो ट्रंकेटेड रहा, और उस ट्रंकेशन की वजह से मैं समझता हूँ

0: कंटिन्यू ना कर सके, बट हावर उन्होंने जितना भी परफॉर्म किया अच्छा परफॉर्म किया। प्रकाश आपके ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर्स दो पाकिस्तान से और दो वर्ल्ड दुनिया भर से, किन चार क्रिकेटर्स का आप नाम लेना चाहेंगे?
1: बैट्समैनों की अगर बात करें साउथ अफ्रीका के एडी डी विलियर्स और इंडिया के विराट कोहली, ये मेरे बाहर से और पाकिस्तान से मेरे बाबर आजम, इसको किंग भी कहा जाता है
0: बिल्कुल,
1: और उनके अलावा मोहम्मद आसिफ।
0: मोहम्मद आसिफ पे आप दोनों मुत्तफिक हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और एफएस ऑल टाइम फेवरेट कमेंटेटर्स दो पाकिस्तान से और दो इंटरनेशनल।
2: ऑल टाइम फेवरेट कमेंटेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम पाकिस्तान, उर्दू में हसन जलील साहब और इंग्लिश में चिश्ती मुजाहिद, और ऑल ओवर द ग्लोब अगर आप बात करें तो टोनी ग्रेग एंड मार्क निकोलस।
0: दोनों ही आपने इंटरनेशनल इंग्लैंड से पिक किए हैं, मार्क निकोलस जो के हैं हैम्पशायर के लिए खेले भी मगर टॉप लेवल पे नहीं खेले, और टोनी ग्रेग ने तो इंग्लैंड की कैप्टनसी भी की, और टोनी ग्रेग ने ही कहा था कि वी विल मेक देम ग्रोवल वेस्ट इंडीज ने जब उनका टूर, हर कोई आगे टोनी ग्रेग को आउट करके कहता था कम ऑन मेक अस ग्रोवल। उस जमाने में ग्लोबल कमेंट्री में यूज नहीं किया जाता था, आजकल तो कर सकते हैं, आजकल तो और भी बहुत कुछ यूज हो रहा है। बहरहाल वकास आपके फेवरेट्स कौन है और दुनिया भर से जो कमेंटेटर्स दो और दो पाकिस्तान?
1: पाकिस्तान से तारिक सईद और इंग्लिश में रमीज राजा, इंटरनेशनल बात करें तो इंडिया के रवि शास्त्री और टोनी ग्रेग।
0: रवि शास्त्री भी माशाल्लाह इस वक्त एक तरह से बहुत बड़ा टॉल वर्ड है, और खासतौर पर जो टॉस को करते हैं, जिस तरह से टॉस को कंडक्ट करते हैं शायद ही कोई कर पाए। बस मैं अपने लिसनर्स को आखिर में कह देता हूं कि मैंने रेडियो पे हमेशा क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस को बहुत पसंद किया है और ब्रायन जॉनसन को, और अगर आपको कभी यूट्यूब पे मौका मिले तो ब्रायन जॉनसन का लेग ओवर निकाल के जरूर सुने, आपको पता चल जाएगा कि ब्रायन जॉनसन क्या चीज थे। और क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस ने 83 में जब इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया तो कहा था कि दिस इज द बिगेस्ट अपसेट ऑफ दी स्पोर्टिंग हिस्ट्री दैट इंडिया हैव मेड टू वेस्ट इंडीज, यानी क्रिकेट की नहीं बिगेस्ट अपसेट ऑफ द स्पोर्टिंग हिस्ट्री, यानी उस वक्त इतनी कमजोर थी इंडिया या इतनी ताकतवर थी वेस्ट इंडीज कि क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस को कहना पड़ा कि दैट इज द बिगेस्ट अपसेट ऑफ द स्पोर्टिंग हिस्ट्री। तो और फिर पाकिस्तान से ऑफकोर्स चिश्ती साहब और हसन जलील साहब को मैंने बहुत पसंद किया है, ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट कॉमेंटेटर। आज का शो मुकम्मल तौर पर नजर रहा कॉमेंट्री के, और हमारे दोनों साथियों को मैं बहुत मशहूर हूँ, एस एस मलिक साहब फ्रॉम लैया और मोहम्मद वकास साहब फ्रॉम किशोर फरोज, जिन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमारे शो में शिरकत की। जीए एफएम रेडियो नेटवर्क के तमाम लिसनर्स से राना शफाक इजाजत चाहेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, अल्लाह निगेबा।

सिंध जे 8 जिलनि में मकानी इदारनि जी नंढी चूंड लाइ पोलिंग जो अमल मुकमल थियण बाद गैर सरकारी ऐं गैर हतमी नतीजा अचण शुरू थी विया। हैदराबाद, जामशोर, सिजावल, सखर, नौशोर, फिरोज, जेकबाबाद ऐं घोटकीअ में चूंडू थियूं। सखर जे यूसी नसीराबाद में वाइस चेयरमैन जी सीट लाइ पीपुल्स पार्टी उमेदवार लियाकत अली 275 वोट खणी अॻिते, JUI जे कारी खादिम हुसैन 170 वोट हासिल कया आहिनि। नंदापुर वार्ड 3 में JUI जो इसरार कलवड़ 624 वोट खणी अॻिते, आज़ाद उमेदवार अब्दुल गफ़ार कलवड़ 144 वोट खया। ठारू शाह जे यूसी मोलण जे ज़िले काउंसिल जी सीट पीपुल्स पार्टी जो उमेदवार रोशन विस्तड़ो 453 वोट खणी अॻिते, आज़ाद उमेदवार अब्दुल कदीर विस्तड़ो 217 वोट हासिल कया। नौशर फिरोज जे पोलिंग स्टेशन अज़मत देरो ते पीपुल्स पार्टी उमेदवार 342 ऐं आज़ाद उमेदवार खे 78 वोट मिलिया। केएन शाह जे यूसी बुरड़ा जे चयन पोलिंग स्टेशन जे नतीजनि मूजिबि पीपुल्स पार्टीअ जो अमजद बुरड़ो 942 वोट खणी अॻिते आहे, जॾहिं त GDA उमेदवार ज़ुल्फ़कार खुहारो 243 वोट हासिल कया आहिनि। पाकिस्तान ॾखिण एशिया जी तारीख़ ऐं नक्शे तां न ख़तम थियण वारो हिसो आहे। भारतीय आर्मी चीफ जो चिड़ ॾियारींदड़ बयान ज़ाहिर करे थो त भारतीय क़यादत पाकिस्तान जी वजूद वारे तस्वर खे क़बूल नथी करे सघे। ISPR जो भारतीय आर्मी चीफ जी हाणोके इंटरव्यू में बयान ते रदि अमल। ISPR मूजिब भारत खे पाकिस्तान जी अहमियत तस्लीम कंदे पुरमुन गॾियल बका जो रस्तो अख़्तियार करणो पवंदो। हक़ जी जंग दौरान भारत जी मायूसी समूरी दुनिया में वाइखी थी। पाकिस्तान पहिरियां ई आलमी सतह ते अहम मुल्क ऐं हिकु तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे। ज़िमेवार एटमी रियासतूं सैप ऐं स्ट्रेटजिक संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो कनि थियूं। भारतीय क़यादत ॾखिण एशियाई हिकु ॿिए बोहरान या जंग तरफ़ ॾेखण खां पासो करे।

सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त इतमाद जोगी राब्ते कारी मुआशी तरक़ी ऐं अवामी ख़िदमतनि खे हथी ॾियण लाइ अंटर आहे। डिजिटल राब्ता अॼु तालीम, सिहत, वापार ऐं अवामी ख़िदमतनि जी बुनियादी ज़रूरत बणजी चुका आहिनि। परे वारनि इलाइक़नि में डिजिटल पहुच मुआशी मौक़नि ऐं ॼाण ताईं पहुच जो अहम ज़रियो आहे। टेली कम्यूनिकेशन ऐं इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जे आलमी ॾिहाड़े ते सदर ज़रदारी आई टी वज़ारत, पीटीए ऐं मोबाइल ऑपरेटर्स जी ख़िदमतुनि जी वाखाण कंदे चयो त हुकूमत मुल्क में डिजिटल पहुच ऐं राब्तनि खे

ठाहिण लाइ कोशिशूं वठी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त नेशनल AI पॉलिसी 2025 हिकु इनकलाबी क़दम आहे जेका पाकिस्तान में हथरादू ज़हानत जी माहौलियाती निज़ाम जी तरक़ीअ जी ज़मीन आहे।

पासपोर्ट की कापी सामू अची वही दस्तावेजन मुजिब जवाबदार पिनकी 17 अप्रैल 2018 से कराची में पासपोर्ट हासिल कर जो अप्रैल 2023 में एक्सपायर थो जवाबदार पिनकी सुणप कार्ड भी कराची में 6 दिसंबर 2016 में हासिल कर पतो गुलशन इकबाल के अबुल हसन असवानी रोड जो लिखल है जरिये मुजिब पिनकी की कुटुंब की पासपोर्ट और सुणप कार्डन जहा तफसील भी हासिल किया व्या पिनकी जहा सफरी दस्तावेज हासिल करने की कोशिश कई पी वे जांच अख्तियार मुजिब पिनकी नालो तब्दील कर एक बो सुणप कार्ड ठहराने की भी कोशिश कई मामले की मुख्तलिफ रुख का जांच कई पी वे सीनियर सूबे वजीर शर्जील इनामे में वफाकी हुकूमत कें भी नई तरमीम ला सिंध सरकार से राबो ना कर अफवाहों से ध्यान न डनो वे तरमीमन जहा हमेशा मसौदा इंदा बीआरटी रेड लाइन और शाहराह भुट्टो की ट्रेक के दौरे दौरान शर्जील मेमन मंशियात समूरी दुनिया जो मसलो है जवाबदार पिनकी एक जहर विक्रो कदड़ औरत हुई और कें नालो न तो खड़ चाहें पर ही पूरा नेटवर्क है और कें नालो वस तो सोशल मीडिया से मीम्स ठहद सूबे वजीर नासिर हुसैन शाह जो चवण हो तो शाहराह भुट्टो कराची के शहर तोहफो है सिंध के बेन शाहराहन के भी बेहतर कर पे वे सिंध के नवन जिले में मकानी इदार की नंढी चूंड लाए वोटिंग जो अमल मुकम्मल थे बाद नतीजन के गणप जो सिलसिलो जारी हैदराबाद जामशोरो सजावल खास जकमाबाद ए घोटकी में खाली थल सीटन से नंढी चूंड लाए वोटिंग जो अमल जारी है।

कराची बार एसोसिएशन जी चूंडू कराने जो जिम्मेवारियों बैरिस्टर जुल्फकार जलबाणी हवाले समूर इन धुरन जी रास्ते खां पोए सिंध बार काउंसिल बैरिस्टर जुल्फकार जलबाणी जी इलेक्शन कमिश्नर तौर मुकरे जो नोटिफिकेशन जारी करे छड़ियो। नोटिफिकेशन मूजिब जुल्फकार जलबाणी 30 दिन अंदर कराची बार एसोसिएशन जी चूंडू कराइंदो। 7 मई ते दांदली जल्दामन बाद कराची बार एसोसिएशन जी चूंडू मुलतवी कई वयूं हुयूं।

0: सकरन में मामे के कत्ल कंदल जवाबदार जो हथ है लाश के तनी कलाकन खां अस्पताल में पहल को भी माइट वसूल करण लाए न पुतो गुजल रात कुंभ लीमा भरसा मिस्री जमाले जो तशद थियल गोली लगल लाश हथायो हो पुलिस लाश तहवील में वठी तालके अस्पताल मुंतकिल कर वारसन में केर भी वसूल करण लाए न पहुंचन सब लाश तालके अस्पताल के मुर्दाखाने में पैल पुलिस मूजिब टे ढी अग जवाबदार मिस्री जमाली जमीन में शमस जमे हो जवाबदार जो अज गोलू लगल लाश हथ कर वारसन आया तो सरकार की मदद में केस दाखिल कर
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हेलो बना, खबर ना है। मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला सुन दिया है।
1: तू खाइंदी इच्छा है स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है।
2: सोचो जरा, तुम है थके हो क्यों?

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: माँ थी रही आही ना मुझो भी इयो ही हाल हो
1: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कि उन्होंने माँ तो एतरो थकी थी पवा चा कयो हो।

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
0: Yeah!

0: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो लई।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुझी सकंदा। कणक खरीदारी लटकियल, आबादगारन पारां सब्सिडी वठण बावजूद कणक न मिलण ते हुकूमत आपे खां बाहिर। आबादगारन खां सब्सिडी जा पैसा ओगाइण जो हुकुम। डिफॉल्टर आबादगारन खे 5 सालन जे लाइ ब्लैकलिस्ट करण जी तजवीज़। मौलाना फजल रहमान ऐं पीर पागारे में पीपी मुखालिफ इतिहाद खे मजबूत करण ते इतफाक। कराची में अहम मुलाकात। एंटी करप्शन सिंध पारां मीरपुर खास जे रेवन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी कंदड़ वधीक 3 ॼणा गिरफ्तार। जांच दौरान अहम इंकशाफ। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे सीसीई 2024 इम्तिहान जा तकरारी नतीजा मुअतल। रिकॉर्ड सील सेक्रेटरी तलब। लाड़काणे अस्पताल में वियम लाइ आयल औरत बार समेत फोत। डॉक्टरनि ते गफलत जो इल्ज़ाम। स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सघंदा। सिंध में कारोकारीअ जो कारोबार कॾहिं ख़तम थींदो।

सिंध हुकूमत पारां सूबे जे 3,36,000 नंढनि आबादगारनि खे कणक पोखीअ लाइ यूरिया ऐं डीएपी जे मद में सब्सिडी ॾियण बावजूद कणक सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ताईं न पहुती। सिंध हुकूमत पारां कणक ख़रीदारीअ जो 10 लख टन वारो हदफ़ पूरो न थियण जो इम्कान। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंध हुकूमत समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखी हिदायत कई आहे त जिन आबादगारनि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में 22,000 रूपिया सब्सिडी वठण बावजूद कणक जी पोखाई न कई आहे उन्हनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां सिंध जे ज़राअत खाते जे अख़्तियारनि पारां समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखी उहा हिदायत कई वई आहे त सिंध काबीना जे फैसले हेठि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में रक़म वठण बावजूद कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंध हुकूमत पारां सिंध काबीना जे फैसले तहत 25 एकड़ खां घटि ज़मीन रखंदड़ आबादगारनि खे कणक पोखाईअ लाइ फी एकड़ जे हिसाब सां डीएपी ऐं यूरिया ख़रीदारी जे लाइ 22,000 रूपियनि ताईं सब्सिडी ॾिनी वई हुई। ज़रियनि मूजिबि त कणक पोखी न थियण ऐं सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ते नंढनि आबादगारनि पारां कणक न पहुचाइण बाद सिंध हुकूमत पारां सख़्त फ़ैसिलो कंदे आबादगारनि खां सब्सिडी वापसि कराइण जे लाइ डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखियो वियो आहे। उन हवाले सां सिंध सरकार जो चवणु आहे त अहिड़नि आबादगारनि खां न रुगो रक़म वापसि वरिती वेंदी पर ईंदड़ 5 सालनि ताईं खेनि कंहिं बि क़िस्म जी सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जी राजा हाउस आमंद सिंध में पीपी मुखालिफ़ इतिहाद खे मज़बूत करण जो फ़ैसिलो। हुन ॾस में काल्ह मौलाना फज़ल रहमान राजा हाउस पहुची GDA जे सरबराह पीर पागारे सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात जे आमद वक़्तु सैद राशिद शाह राशिदी ऐं मौज़ूम आबासी संदसि इस्तक़बाल कयो। जॾहिं त मुलाक़ात दौरान JUI अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो ऐं ॿिया अॻवान पिण मौजूद हुआ। ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात दौरान सिंध समेत मुल्की सूरत हाल ते गुफ़्तगू थी। मुलाक़ात में सिंध जे GDA ऐं JUI पारां गॾियल हिकमत अमलीअ तहत सिंध सरकार खे टफ़ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। होॾां GDA तर्जुमान मूजिबि मुलाक़ात में JUI क़यादत पारां सखर में कोठायल अमन कॉन्फ्रेंस में GDA क़यादत खे शरीक थियण जी दावत ॾिनी वई। मुलाक़ात में सिंध समेत सॼे मुल्क जे तालीमी इदारनि में मंशियात फरोशीअ ते पिण गणतीअ जो इज़हार कयो वियो। मीरपुर खास में रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी ऐं जाली खाता ठाहिण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल मीरपुर खास तालके जे अॻूणे मुख़्तियारकार राशिद जी मुबैना इनकशाफ़नि खां पोइ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई कंदे हिकु ॼणे इम्तियाज़ बरफत संदसि सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफत ते इल्ज़ाम आहे त हू हेराफेरी कंदड़ रेवेन्यू आफ़िसरनि लाइ फ्रंटमैन तौर किरदार अदा कंदो हो। एंटी करप्शन खाते जे ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफत 40 रुपियनि जी मिल्कियत पंहिंजे सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम जे नाले रजिस्टर्ड कराए छॾी हुई। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल जवाबदार ते उहो पिणु इल्ज़ाम आहे त हुननि रेवेन्यू अमलदारनि जे मिली भगत सां क़ीमती एराज़ीअ जा जाली खाता ठाहिया ऐं गॾोगॾु सरकारी ऐं निजी ज़मीनुनि जूं फर्ज़ी दाख़िलाऊं तयार कयूं हुयूं ऐं गॾोगॾु हुननि सरकारी रिकॉर्ड में रदो बदल करे ज़मीन जी मिल्कियतुनि खे पिणु तब्दील कयो हो। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल इम्तियाज़ बरफत अहम इनकशाफ़ कया आहिनि, जंहिं बाद ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ छापा पिणु हया वञनि पिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन CCE 2024 इम्तिहान जे तकरारी नतीजनि खे मुअतल करे छॾियो। काल्ह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जे नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी। दरख़्वास्त गुज़ार मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त उहे स्क्रीनिंग टेस्ट ऐं लिखत वारे इम्तिहान में सुठी कारकर्दगीअ बावजूद इंटरव्यू में नाकाम करार ॾिना विया। जॾहिं त मेरिट जे उबतड़ मनपसंद उमेदवारनि खे कामयाब करार ॾिनो वियो, उन ई इम्तिहान में वेठल 10,000 मां सिर्फ़ 70 उमेदवारनि खे पास कयो वियो आहे। अहिड़े अमल सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजी साख विञाए चुकी आहे। अदालत इब्तदाई ॿुधणीअ बाद मामले खे गौर तलब करार ॾींदे कमीशन जे सेक्रेटरी कंट्रोलर एडवोकेट जनरल सिंध ऐं लाॻापियल ज़रियनि खे 21 मई लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे हुकुम ॾिनो त गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पेश कयो वञे। अदालत वधीक हुकुम ॾिनो त 6 मई 2026 ते जारी कयल नतीजनि बाबति प्रेस रिलीज़ ते ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं अमल दरामद मुअतल रहंदो। उन ई बुनियाद ते वधीक का बि कार्रवाई न कई वेंदी।
लाड़काणे जे शेख जैद औरतानी अस्पताल में वियम जे लाइ दाख़िल शहदाद कोट भरसां ॻोठ गोलू वाह जी रहवासण अठनि ॿारनि जी माउ चालीह वरनि जी नाज़िया ज़ाल राज़ी ख़ान खोसो ऐं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार फौत थी विया। वारसन अस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं अमले मथां गिफ़लत जो इल्ज़ाम लॻाईंदे एहतजाज कयो। उन मौके ते फौती औरत जे भाउ हिदायतुल्ला खोसो इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त मंझंदि ॿारहें वॻे धारे मां पंहिंजी भेण नाज़िया खोसो खे वियम जे लाइ लाड़काणे जे शेख ज़ैद औरतानी अस्पताल दाख़िल करायो, जिथे डॉक्टरनि जे मशोरे ते मां हज़ारे रुपियनि जूं क़ीमती दवाऊं ख़रीद करियूं, रत जूं अठ थेलियूं खेन ॾिनियूं। उन जे बावजूद डॉक्टरनि भेण जो इलाज न कयो, जिन खे मां इलाज मिंथूं बि कयूं पर हुननि मुंहिंजी हिकु बि न ॿुधी। जिन जी गिफ़लत ऐं लापरवाही सबब मुंहिंजी भेण अठनि ॿारनि जी अमर नाज़िया खोसो अस्पताल जे वार्ड में तड़पी तड़पी फोत थी वई, जॾहिं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार बि फोत थी वियो आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठण लाइ भेण जे इलाज में गिफ़लत जो मुज़ाहिरो कंदड़ डॉक्टरनि ऐं अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network सिंध की आवाज।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: यार नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
1: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: आहे सिंध जी दिल एफएम
1: नियर नई का चीज 88 नाइस
2: सुबह की चाय हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
1: अपना

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा मियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा। कणक खरीदारी लटकियल, आबादगारन पारां सब्सिडी वठण बावजूद कणक न मिलण ते हुकूमत आपे खां बाहिर। मौलाना फजल रहमान ऐं पीर पागारे में पीपी मुखालिफ इतिहाद खे मजबूत करण ते इतफाक, कराचीअ में अहम मुलाकात। एंटी करप्शन सिंध पारां मीरपुर खास जे रेवन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी कंदड़ वधीक टे ॼणा गिरफ़्तार, जांच दौरान अहम इंकशाफ़। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे सीसीई 2024 इम्तिहान जा तकरारी नतीजा मुअतल, रिकॉर्ड सील, सेक्रेटरी तलब। लाड़काणे अस्पताल में वियम लाइ आयल औरत बार समेत फोत, डॉक्टरनि ते गिफ़लत जो इल्ज़ाम। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, सिंध में कारोकारीअ जो कारोबार कॾहिं ख़तम थियो।

सिंध हुकूमत पारां सूबे जे 3,36,000 नंढनि आबादगारनि खे कणक पोखीअ लाइ यूरिया ऐं डीएपी जे मद में सब्सिडी ॾियण बावजूद कणक सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ताईं न पहुती। सिंध हुकूमत पारां कणक ख़रीदारीअ जो 10,00,000 टन वारो हदफ़ पूरो न थियण जो इम्कान। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंध हुकूमत समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखी हिदायत कई आहे त जिन आबादगारनि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में 22,000 रुपया सब्सिडी वठण बावजूद कणक जी पोखाई न कई आहे उन्हनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां सिंध जे ज़राअत खाते जे अख़्तियारनि पारां समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखी उहा हिदायत कई वई आहे त सिंध काबीना जे फ़ैसिले हेठि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में रक़म वठण बावजूद कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंध हुकूमत पारां सिंध काबीना जे फ़ैसिले तहत 25 एकड़ खां घटि ज़मीन रखंदड़ आबादगारनि खे कणक पोखाईअ लाइ फ़ी एकड़ जे हिसाब सां डीएपी ऐं यूरिया ख़रीदारी जे लाइ 22,000 रुपयनि ताईं सब्सिडी ॾिनी वई हुई। ज़रियन मूजिब त कणक पोखी न थियण ऐं सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ते नंढनि आबादगारनि पारां कणक न पहुचाइण बाद सिंध हुकूमत पारां सख़्त फ़ैसिलो कंदे आबादगारनि खां सब्सिडी वापसि कराइण जे लाइ डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखियो वियो आहे। उन हवाले सां सिंध सरकार जो चवण आहे त अहिड़नि आबादगारनि खां न रुगो रक़म वापसि वरिती वेंदी पर ईंदड़ 5 सालनि ताईं खेनि कंहिं बि क़िस्म जी सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जी राजा हाउस आमंद सिंध में पीपी मुखालिफ़ इतिहाद खे मज़बूत करण जो फ़ैसिलो। हुन ॾस में काल्ह मौलाना फज़ल रहमान राजा हाउस पहुची GDA जे सरबराह पीर पागारे सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात जे आमद वक़्तु सैद राशिद शाह राशिदी ऐं मौज़ूम आबासी संदसि इस्तक़बाल कयो। जॾहिं मुलाक़ात दौरान JUI अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो ऐं ॿिया अॻवान पिण मौजूद हुआ। ज़रियनि मूजिब मुलाक़ात दौरान सिंध समेत मुल्की सूरत हाल ते गुफ़्तगु थी। मुलाक़ात में सिंध जे GDA ऐं JUI पारां गॾियल हिकमत अमलियत तहत सिंध सरकार खे टफ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। होॾां GDA तर्जुमान मूजिब मुलाक़ात में JUI क़्यादत पारां सखर में कोठायल अमन कॉन्फ्रेंस में GDA क़्यादत खे शरीक थियण जी दावत ॾिनी वई। मुलाक़ात में सिंध समेत सॼे मुल्क जे तालीमी इदारनि में मंशियात फरोशीअ ते पिण गणतीअ जो इज़हार कयो वियो। मीरपुर खास में रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी ऐं जाली खाता ठाहिण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल मीरपुर खास तालके जे अॻूणे मुख़्तियारकार राशिद जी मुबैना इनकशाफ़नि खां पोइ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई कंदे हिकु ॼणे इम्तियाज़ बरफत संदसि सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि मूजिब इम्तियाज़ बरफत ते इल्ज़ाम आहे त हू हेरा फेरी कंदड़ रेवेन्यू आफ़ीसरनि लाइ फ्रंटमैन तौर किरदार अदा कंदो हो। एंटी करप्शन खाते जे ज़रियनि मूजिब इम्तियाज़ बरफत 80 रुपयनि जी मिल्कियत पंहिंजे सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम जे नाले रजिस्टर्ड कराए छॾी हुई। ज़रियनि मूजिब गिरफ़्तार थियल जवाबदार ते उहो पिण इल्ज़ाम आहे त हुननि रेवेन्यू अमलदारनि जे मिली भगत सां क़ीमती एराज़ी जा जाली खाता ठाहिया ऐं गॾोगॾु सरकारी ऐं निजी ज़मीनुनि जूं फर्ज़ी दाख़िलाऊं तयारु कयूं हुयूं ऐं गॾोगॾु हुननि सरकारी रिकॉर्ड में रदो बदल करे ज़मीन जी मिल्कियतुनि खे पिण तब्दील कयो हो। ज़रियनि मूजिब गिरफ़्तार थियल इम्तियाज़ बरफत अहम इनकशाफ़ कया आहिनि, जंहिं बाद ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ छापा पिण हया वञनि पिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन CCE 2024 इम्तिहान जे तकरारी नतीजनि खे मुअतल करे छॾियो। काल्ह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जे नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी। दरख़्वास्त गुज़ार मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त उहे स्क्रीनिंग टेस्ट ऐं लिखत वारे इम्तिहान में सुठी कारकर्दगीअ बावजूद इंटरव्यू में नाकाम करार ॾिना विया, जॾहिं त मेरिट जे उबतड़ 7 पास कयो वियो आहे। अहिड़े कमीशन पंहिंजी साख

अदालत वधीक हुकुम डिनो 2026 ते जारी कयल नतीजन बाबत प्रेस रिलीज ते ईंदड़ अमलदार रहंदो उन ई बुनियाद ते वधीक का बि कार्रवाई न कई वेंदी। ॿारनि जी माउ 40 वरनि जी नाज़िया ज़ाल राज़ी खान खोसो ऐं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार फौत थी विया। वारसन इस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं अमले मथां गिफ़लत जो इल्ज़ाम लॻाईंदे एहतजाज कयो। उन मौके ते फौती ओर जे भाउ हिदायतुल्ला खोसो इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो आहे त मंझंदि 12 वॻे धारे मां पंहिंजी भेण नाज़िया खोसो खे वियम जे लाइ लाड़काणे जे शेख ज़ैद औरताणी इस्पताल दाख़िल करायो, जिथे डॉक्टरनि जे मशवरे ते मां 1000 रुपियनि जूं क़ीमती दवाऊं ख़रीद करियूं, रत जूं 8 थेलियूं खेनि ॾिनियूं। उन जे बावजूद डॉक्टरनि भेण जो इलाज न कयो, जिन खे मां इलाज मिंथू बि कयूं पर हुननि मुंहिंजी हिकु बि न ॿुधी। जिन जी गिफ़लत ऐं लापरवाही सबबि हुननि ॿारनि जी अमर नाज़िया खोसो इस्पताल जे वार्ड में तड़ी वई, जॾहिं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार बि फौत। मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठण लाइ भेण जे इलाज में गिफ़लत जो मुज़ाहिरो कंदड़ डॉक्टरनि ऐं अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।

0: किया है संत जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो नहीं।
2: जीए लतीफ जीए लतीफ जीए लतीफ
0: सिंध जो आवाज। अच्छा।